हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर, एफएम पर 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 जून सन 2026 सवेरे के 5:57 होने को है। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारो चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों के विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के

0: प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: यूनाइटेड किंगडम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
0: भारत

0: मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: यूनाइटेड किंगडम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। यह समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: एंड टुगेदर बिकमिंग अ फोर्स मल्टीप्लायर।
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आज के विचार में सुनिए मानव कल्याण विषय पर विचार। वाचक स्वयं श्री विश्वनाथ मिश्र का है।
4: आधुनिक सभ्य समाज का मत है कि मनुष्य को समय के प्रवाह के अनुसार अपना आचार विचार बनाते चलना चाहिए। पुराने समय की सामाजिक सुव्यवस्था के लिए पुराने नियम या धर्म चाहे अपेक्षित भले रहे हों, किंतु आज के संसार की गतिविधियां उन पुराने सारे नियमों को आगे रखना केवल उन्नति के मार्ग में रोड़े अटकाना है। आज समय बहुत आगे निकल चुका है, अतः समय के अनुसार नए नियम और धर्म होने चाहिए, किंतु यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि यह संसार आकस्मिक नहीं है। इसका निर्माता कोई अलौकिक शक्ति है। उसके द्वारा प्रदत्त वेद शास्त्र ही हमारे धर्म के मूल स्रोत है। उनमें परिवर्तन कथन अपि संभव नहीं है। अब रही बात वैज्ञानिक समुन्नति की, तो आज जितने वैज्ञानिक चमत्कार हैं वे विश्व के भीतर विश्व के साधनों से बने हैं। ये चमत्कार आज की ही देन है, यह बात नहीं। देवताओं के अनंत विमान, करदम ऋषि विरचित मनोनुभानी पुष्प विमान पहले थे ही, जिन पर लोगों का विश्वास नहीं होता था। श्री रामचंद्र और अरविंद आदि के अद्भुत अनंत अनुपमेय अस्त्र शस्त्रों पर विश्वास नहीं होता था, किंतु आज के युग में उन अविश्वासियों को भी

0: अपनी बातों पर विश्वास करना ही पड़ता है। अर्वाचीन साधनों की अपेक्षा प्राचीन साधनों की यह विशेषता थी कि उनके ऊपर संचालकों का पूरा नियंत्रण रहता था। प्रयोग और संहार दोनों ही उनके अधीन थे। आज भी वैज्ञानिक चमत्कार में अपार घन जन शक्तियों का क्षय होता है। निरपराध प्राणियों का निरर्थक संहार जिनके द्वारा हो, ऐसे भस्मासुर के समान अस्त्र शस्त्रों से मानवता का क्या कल्याण हो सकता है। यह कम आश्चर्य की बात नहीं है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व भारतीय आस प्रतिभा ने करोड़ों मील दूर रहने वाले ग्रहों के रूप रंग उनकी गतियां उनकी कक्षाओं का जो निरूपण किया है वह आज के वैज्ञानिकों के लिए आज भी दुर्लभ ही है। इसलिए आज जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, यह समझना सिवा भ्रांति के और कुछ नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि अध्यात्म नियंत्रण से रहित वैज्ञानिक समन्वति कभी भी मानवता का कल्याण नहीं कर सकती। आज के समन्वत वैज्ञानिक देश किस प्रकार जड़वाद की शुष्क मरुमरीचिका में शांति सरित के अन्वेषण में व्यग्र है, यह बात किसी से तिरोहित नहीं है।
1: आज के विचार में अभी आप सुन रहे थे मानव कल्याण विषय पर विचार, वाचक स्वर श्री विश्वनाथ मिश्र का था। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोल अमारो चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं रामचरितमानस गान का सस्वर पाठ। संगीतकार हैं श्री सतीश भाटिया। आज आप सुनेंगे बालकांड की दोहा संख्या 186 से दोहा संख्या 188 की अंतिम चौपाई तक।
1: 7-0

राक्षसों तथा पापाचारियों से आतंकित पृथ्वी तथा ब्रह्मा सहित देवताओं ने परम पिता की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। तब गंभीर आकाशवाणी हुई, हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामी, भयभीत न हो, तुम्हारे कल्याण के

ये मनुष्य रूप धारण करके मैं सूर्य वंश में अवतरित होऊंगा। अदिति तथा कश्यप ने कठोर तपस्या करके मेरा वरदान प्राप्त किया और वे ही कौशल्या तथा दशरथ के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर श्रेष्ठ चार भाइयों के रूप में मैं अपनी परम शक्ति समेत पैदा होऊंगा। आकाश में गूंजती ब्रह्मवाणी अपने कानों सुनकर सभी देवता आश्वस्त हुए।

आप सुन रही थी रामचरित मानस गान का सस्वर पाठ। संगीतकार थे श्री सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोल मारू चैनल से बोल रही हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

0: सवेरे 7 बजे सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वार्ता मुहर्रम और इमाम हुसैन। वार्ताकार होंगी श्री बिशारत अली। प्रस्तुति रविंद्र रामलेगा की। कार्यक्रम संयोजन श्री अमित सिंह का होगा। ₹8:30 पर सौरभ कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वार्ता हल्दीघाटी भारतीय इतिहास का प्रतिम युद्ध। वार्ताकार होंगे डॉक्टर भंवरलाल भवानी। सवेरे 9:15 पर गांधी चर्चा कार्यक्रम होगा। आज का विषय रहेगा खिलाफत सम्मेलन में भाषण। वाचक स्व श्री प्रमोद कुमार शर्मा का, प्रस्तुति अशोक कुमार की, कार्यक्रम संयोजन श्री अमित सिंह का। 9:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। 10 बजे सुनिए फिल्म संगीत। 1:05 पर बहने अपना कार्यक्रम सुनेंगी महिला जगत। चर्चा के विषय रहेंगे डिजिटल इंडिया के 12 वर्ष तकनीक से सशक्त होती नारी। मुहर्रम कानूनी साक्षरता की आवश्यकता, इको फ्रेंडली होम डेकोर। साथ ही आप सुनेंगे वार्ता महिलाएं पहचानें अपने कानूनी अधिकार। वार्ताकार होंगी श्रीमती सुहानी शर्मा। साथ ही रसोई की बातें और ब्यूटी टिप्स। संध्या 5:05 पर युवा साथियों के लिए युवाणी का प्रसारण होगा। आज की बात का विषय रहेगा गतिशीलता और संतुलन के लिए योग। लघु जानकारी सुनिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य। पढ़ने की आदत डाली, मनचाही जिंदगी के लिए मेहनत है आवश्यक। लोक कला पिछवाई, रोजगार समाचार और गीत संगीत। संध्या 7 बजे ग्रामीण श्रोताओं के लिए ग्रामीण जगत का प्रसारण होगा। चर्चा के विषय होंगे वर्षा आधारित कृषि और खरीफ फसलें। आधुनिक कृषि उपकरण और मशीनें, शिक्षित समाज, विकसित समाज, लोकगीत और मौसम संबंधी जानकारी। 8:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। रात 9:15 पर फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। 10 बजे उर्दू कार्यक्रम गुलिस्तान और जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, कलाकार रजनीकांत देसाई। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोले मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है खेती की बातें।
1: खेती की बात कार्यक्रम में आज आप बात कराला नैनो यूरिया री। नैनो यूरिया किसान बया वास्ते स्मार्ट कृषि और जलवायु परिवर्तन सु सामनो करने वास्ते एक स्थायी विकल्प बनर सामने आयो है। ए उर्वरक रे रूप में पौधारी नाइट्रोजन री आवश्यकता ने पूरा करे है, क्योंकि नैनो यूरिया रे कण रो आकार 20 से 50 नैनोमीटर रे अड़ेगड़े होया करे है। इनसु आरो सतह क्षेत्र दानेदार यूरिया सु 10,000 गुना बत्तो हो जावे। इन कारण सु नैनो यूरिया दानेदार यूरिया री तुलना में कम लागे है और घणो प्रभावी होवे है। बात करा नैनो यूरिया क्यों उपयोगी है। नैनो यूरिया नाइट्रोजन रो स्रोत है और नाइट्रोजन पौधा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन रो निर्माण और पौधा री बढ़ोतरी वास्ते उपयोगी है। सामान्यतया एक स्वस्थ पौधे में नाइट्रोजन री मात्रा 1.5 से 4% ताई होया करे है। छिटकवा विधि में यूरिया पौधारी जड़ माथे पड़े है, जबकि नैनो यूरिया में सीधे पत्तियां पर छिड़काव हुए है। नैनो यूरिया रो पत्तियां माथे छिड़काव करने सु नाइट्रोजन री आवश्यकता प्रभावी तरीके सु पूरी हो जावे। इन सु नैनो कणारे कारण इरी अवशोषण क्षमता 80% सु भी बत्ती पाई जी है, जबकि सामान्य यूरिया री तुलना में घनी बेसी है।

0: अबे बात करा 500 मिली लीटर री एक बोतल सामान्य यूरिया रे एक थैले रे बराबर है। आपने बतानी चाहा के यूरिया री एक पूरी बोरी है, मेरी शक्ति अबे आधी लीटर री बोतल में आ गई है। इरे कारण एक तो माल ढोने वास्ते परिवहन में लागत आउती ही और भंडारण वास्ते जगह बेसी चाहती ही बीर मायने कमी आई है। यानी कि परिवहन आपा ज्यादा बोतला रो कर सका है और भंडारण भी आपा ज्यादा मात्रा में कर सका है। कोई भी नैनो यूरिया तरल री 500 मिलीलीटर एक बोतल सामान्य यूरिया रे कम से कम एक थैले रे बराबर है। नैनो यूरिया प्रभावी रूप से फसल री नाइट्रोजन आवश्यकता ने पूरी करे है, जिनसु फसल चोखी हुए, फसल उत्पादकता में बढ़ोतरी होवे, लागत में कमी आवे, या कर किसान बयारी आमदनी में भी बढ़ोतरी होवे। उच्च दक्षता रे कारण ओ पारंपरिक यूरिया री आवश्यकता ने 50% या 20-32% तक कम कर सके है। नैनो यूरिया तरल रो आकार छोटो होने रे कारण इन्हें आपा आपारी जेब में भी रख सका है। इरे कारण इरे परिवहन और भंडारण लागत में घनी कमी आवेला। ओ नैनो यूरिया आपरे पर्यावरण वास्ते भी घनो फायदेमंद है। प्राकृतिक जैव विविधता बनाए रखने वास्ते ही नैनो तरल यूरिया रो अनुसंधान करियो गयो है। केमिकल फर्टिलाइजर माटी रे मायने उपस्थित कुदरती खाद बनाने वाला केंचुआ ने मार देवे, बठे ओ जिको तरल है नैनो यूरिया ओ इरो छिड़काव करया माटी रे मायने कोई भी तरह रो विषाक्त कोनी होवे नी। इरे कारण माटी में पाया जाने वाला रोगाणु और दूजा जीवित जीव जीवा जिया के केंचुआ माथे कोई नकारात्मक प्रभाव कोनी पड़े। ओ तरल नैनो यूरिया माटी हवा और पानी की गुणवत्ता ने बचाई रखने में सहायता करे है। आज 5 देशों रे अड़े गड़े तरल यूरिया रो निर्यात करियो जा रियो है। ओ तरल यूरिया ना केवल भारत सागे ही दुनिया रे किसान री मदद करेला। आपारो देश कदे यूरिया रो आयात करतो हो, पण अबे आज रे समय रे मायने आपारी सरकार सजग है और यूरिया रा कई कारखाना पुनर्जीवित कराया गया है। इरे कारण आपारो देश इन क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने री दिशा में आगे बढ़ रियो है। इनसु किसान री माटी भी अच्छी रेवेला और उत्पादन में भी बढ़ोतरी होवेला। ओ जको नैनो यूरिया है ओ जैविक खेती ने भी बदे पो देवे है। सरकार रा तय लक्ष्य रे मुताबिक और जिन तेजी सु इन दिशा में काम करियो जा रियो है, उन सगड़ा रे फल स्वरूप आउन आले बरसा में आपारो देश यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कर लेवेला, सागे ही जैविक खेती में भी आपारो देश आगे निकल जावेला। आपारी सरकार देश में किसान भाइयों ने जैविक खेती करने में बढ़ावा दे रही है। इनसु देश में उर्वरक री खपत में घनी कमी आवेला। इन बात आपारो देश तरक्की रे नए रास्ते पर आगे हूं आगे बढ़तो जा रियो है। नैनो यूरिया सु आयात में आपारी निर्भरता कम होवेला, आपारो देश आत्मनिर्भर बनेला। आपारी सरकार नैनो यूरिया उत्पादन रे बदे पे सारू लगो लग प्रयास कर रही है।
1: नैनो यूरिया के बारे में जानकारी दे रहे थे श्री बजरंग सारस्वत। कार्यक्रम था खेती की बातें। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोल मारो चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं लोक भजन।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। अभी आप सुन रहे थे लोक भजन। कुछ पहले मैं आप संस्कृति में समाचार सुनेंगे।

सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जीवन का आनंद लेने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि हम स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और स्वस्थ रहने के लिए ये आवश्यक है कि स्वास्थ्य का ख्याल रखें, योग को महत्व दें। श्रोताओं, अगर हम नियमित रूप से योग करते हैं तो अपने शरीर को मजबूत और लचीला बनाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम सामुदायिक योग के महत्व को समझें और उसे अपनाएं। सामुदायिक यानी कि किसी पार्क, किसी भवन, सार्वजनिक स्थान पर लोगों के साथ मिलकर योग का अभ्यास करें। श्रोताओं, शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि सामाजिक एकता

मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत बनाता है। योग और प्राणायाम तनाव, चिंता, मानसिक थकान को तो कम करते ही हैं, हमारे मन को शांत करते हैं, एकाग्र करते हैं। श्रोताओं, जब समूह में योग करते हैं तो नियमित अभ्यास की आदत विकसित होती है और लोग संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और स्वस्थ दिनचर्या अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। सामूहिक योग जब हम करते हैं तो एक सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनता है, जिससे हमारे अंदर एक उत्साह आता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। श्रोताओं, सामुदायिक योग सक्रिय

हम एकाग्र बने, अनुशासित बने और आत्मविश्वास हमारे अंदर विकसित हो। जब अधिक लोग नियमित रूप से योग करते हैं तो समुदाय में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ती है और स्वस्थ समाज के निर्माण में भी सहायता मिलती है। श्रोताओं, कहने का मतलब ये है कि सामुदायिक योग केवल एक साथ किए जाने वाले आसनों का अभ्यास नहीं बल्कि स्वस्थ शरीर, शांत मन और एक सशक्त समाज की ओर बढ़ाया गया सामुदायिक कदम है। यही कारण है कि आज सामुदायिक योग को स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ राष्ट्र की दिशा में एक प्रभावी पहल माना जाता है। तो श्रोताओं, आवश्यकता इस बात की है कि सामुदायिक रूप से समूह के साथ योग को अपनाएं और उसे महत्व दें, स्वस्थ जीवन प्रणाली को अपनाएं।

0: चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के भोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: शतो आज ही मुहर्रम इस्लामी नववर्ष का पहला महीना। ये केवल नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक नहीं श्रोताओं बल्कि सत्य न्याय धैर्य त्याग और मानवता के उच्च आदर्शों की याद भी दिलाता है। विशेष रूप से कर्बला की घटना हमें यह संदेश देती है कि सत्य और न्याय की रक्षा के लिए साहस संयम और दृढ़ संकल्प का मार्ग ही सबसे महान मार्ग है। मुहर्रम का संदेश किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है श्रोताओं बल्कि ये इंसानियत करुणा नैतिक मूल्यों और आपसी भाईचारे की भावना को मजबूत करने की प्रेरणा देता है। इन्हीं विचारों के साथ आइए सुनते हैं मुहर्रम के ऐतिहासिक धार्मिक और मानवीय महत्व पर आधारित आज की विशेष वार्ता। मुहर्रम और इमाम हुसैन, वार्ताकार हैं श्री बिशारत अली।
2: हुसैन इब्ने अली की औजे रिफत कोई क्या जाने, हुसैन इब्ने अली की औजे रिफत कोई क्या जाने, हसन जाने अली जाने नबी जाने खुदा जाने, हसन जाने अली जाने नबी जाने खुदा जाने। पैगंबर इंसानियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 63 साल की उम्र में जब निधन होने हो गया उसके बाद खलीफाओं का दौरे हुकूमत हुआ, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से वो भी चलता रहा। चौथे खलीफा हजरत अली के बाद लोकतांत्रिक शासन प्रणाली डगमगाने लगी। हजरत माविया के बेटे यजीद ने यजीद तानाशाही जोर जबरदस्ती बाहुबली बनकर सत्ता पर काबिज हो गया। पैगंबर इंसानियत हजरत मोहम्मद के नवासे यानी दोहिते हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को लोग अपना रहबर यानी लीडर मान रहे थे, जो कि पूर्णतया पवित्र कुरान के नियम जो पैगंबर नाना जान ने लोगों को बताए जिसमें इंसानियत मानवीय मूल्यों पर आधारित थे उन्हीं को मानकर जीवन यापन कर रहे थे जो पूर्णतया सत्य पर आधारित थे। मगर यजीद नामी जालिम बादशाह जिसने सूद ब्याज भ्रष्टाचार को आम कर दिया, शराब झूठ अत्याचार का बोलबाला किया, अनाथ विधवा जरूरतमंदों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाने लगा, इस्लामी कानून जो पवित्र कुरान में है उसका उल्लंघन किया जाने लगा, सच को दबाया गया झूठ को गले लगाया गया। उस

0: बने। चूंकि नबी के घर वाले दुनिया को नापाकी व बुराइयों से साफ सुथरा व खुशहाल जीवन के साथ जिंदगी गुजारने की दावत देने आए थे, अल्लाह ने पवित्र कुरान में नबी के घर वालों की प्रशंसा भी की है, जिसमें कहा गया है, ए लोगों, हमने रसूल के घर वालों को, हमने अपनी नबी के घर वालों को पाक कर दिया है। सख्त गर्मी का मौसम, चिलचिलाती धूप, सूना सूखा अरब के रेगिस्तान में मुहर्रम की 7 तारीख को जालिम यजीद ने आपको बच्चों, औरतों व साथियों का पानी बंद कर दिया, पानी बंद करके झूठ के सामने झुकने को विवश किया, मगर 3 दिन के भूखे प्यासे रहकर अल्लाह पर भरोसा करते हुए आशूरे के दिन बेटे, भांजे, भतीजे, भाई वे वफादार साथी जिनके पास ना मात्र के हथियार थे, मगर वो हथियारों पर नहीं अल्लाह पर भरोसा करते हुए तपते हुए करबला के मैदान में बहादुरी से लड़ते हुए सैकड़ों हजारों की सफों को चीरते हुए दुश्मनों को गाजर मूली की तरह रौंदते हुए शहीद हो गए। शहीद होने वालों में मासूम 6 महीने का बच्चा अली असगर भी था। इमाम हुसैन के सबसे छोटा बच्चा था, उसको भी पानी ना देकर तीरों से छलनी कर दिया गया। इमाम हुसैन भी 56 साल की उम्र में अपने भांजे, भतीजों, बच्चों, साथियों की करबला के मैदान में लाशें उठा रहे थे। भूख और प्यास से खेमों में औरतों का बुरा हाल था, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। सब्र और शुक्र की खेमे में आप इमाम हुसैन ताकीद कर रहे थे। ऐसा करबला का खूनी मंजर जालिम यजीदियों ने सारी हदें पार करके अमानवीय व्यवहार का ऐसा नंगा नाच खेला कि आसमान भी खून के आंसू रो रहा था। बहन सैनब ने करबला के मैदान में भाई हुसैन से पूछा, इन हालात में भी खामोश क्यों हो? आपने फरमाया, कुरान कहता है अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये आयत कुरान के बारे 12 नंबर 2 सूरह बकर का ये अनुवाद है। इस्लामी इतिहास और पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद के नवासे की शहादत की पेशन गोई इस वाणी के रूप में फरिश्तों के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनकी पैदाइश होते ही करबला की मिट्टी पैगंबर को लाकर दे दी थी और कहा था कि जब ये मिट्टी लाल हो जाएगी उसी दिन जालिमों के हाथों हुसैन आपका दोहिता शहीद कर दिया जाएगा। सारांश में हम यूं समझने की कोशिश कर सकते हैं कि इमाम हुसैन ने कुरान व हदीस के कानून को जिंदा रखते हुए पूरे खानदान की कुर्बानी अल्लाह की राह में दे दी। आज भी हुसैन जिंदा है, इस्लाम जिंदा है, जालिम नेस्त व नाबूद हो गया, इस्लाम के अहकाम यानी कानून को मानने वाले दुनिया में करोड़ों अरबों की संख्या में आज भी मौजूद हैं, जो इमाम हुसैन व उनके खानदान को याद करते हैं। हुसैन आप पर सद हजारों सलाम, हुसैन आप पर सद हजारों सलाम, शहीदाने हक के हो तुम्हीं इमाम, शहीदाने हक के हो तुम्हीं इमाम, खुदा जानता है तुम्हारा मकाम, खुदा जानता है तुम्हारा मकाम, जवानाने जन्नत के शाह सलाम।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विशेष वार्ता मुहर्रम और इमाम हुसैन। वार्ताकार थे श्री बिशारत अली।

स्वतंत्र जब इरादे मजबूत हो, आत्मविश्वास अटूट हो और संकल्प हो राष्ट्रहित का, तब विकास की एक नई इबारत लिखी जाती है, आत्मनिर्भर भारत। जी श्रोताओं, आत्मनिर्भर भारत केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय व्यापक दृष्टि है। इसका उद्देश्य भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाना जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी क्षमता, अपने नवाचार, अपने उद्योग पर अधिक भरोसा करे और अपनी अर्थव्यवस्था को सशक्त बना सके। श्रोताओं, आज अगर इस अभियान के परिणाम की ओर देखा जाए तो विनिर्माण के क्षेत्र में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मोबाइल फोन निर्माण से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उत्पादन, अंतरिक्ष, रेलवे, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वोकल फॉर लोकल के संदेश ने स्थानीय उत्पादों को एक नई पहचान दी है। हमारे कारीगर, बुनकर, सभी लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मेड इन इंडिया उत्पादों की गुणवत्ता लगातार एक पहचान की ओर बढ़ रही है। श्रोता, महिलाओं की भागीदारी भी इस अभियान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अपने कार्य, अपने कौशल और अपने प्रयासों से भारत को और अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये उपलब्धियां बहुत बड़ी है।

आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत मोहम्मद रफी के स्वर में है, फिल्म का नाम है गोपी।

मानसामी और साथियों के स्वर में ये गीत था बजरंगी भाईजान का। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर की डोल हमारे चैनल से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर के स्वर में है, फिल्म का नाम है आरती।

90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

एक नए फिल्म सफर की इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। फिल्म संगीत का अगला कार्यक्रम हमारे इसी समय में सवेरे 10 बजे आप सुनेंगे। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोल मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स

के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता

करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी का परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारे जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपए शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
6: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपए है।

0: खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रुपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रूपये शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
2: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा, नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1,520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
3: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी काराकास में भूकंप में लगभग 3,000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों की

0: होने की आशंका। अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप। पत्र लिखता है, लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉइड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है। भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है, बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है, वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई NRC की जरूरत। लोकसत्य ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, NCERT की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक LPG आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि केदार में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from the 27th to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with 2 Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, the Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Prime Minister will also address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. Union Home Minister Amit Shah will chair the 10th apex level meeting of the Narco Coordination Centre in New Delhi today. The meeting, being organised by the Narcotics Control Bureau (NCB), will bring together representatives of central ministries, state governments and drug law enforcement agencies to review and strengthen

0: It's in a Group A clash in Manchester, England last night. Opting to bat first, Bangladesh posted 136 for 8 in the stipulated 20 overs. With this win, India have 6 points in Group A from 3 wins and 1 loss. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
1: Thank you, Anuja. Government lifts Iran war-linked curbs on commercial LPG, writes Hindustan Times. A headline in the Indian Express writes, from Sunday, India will resume tourist visas for Bangladesh nationals. Netra, India's airborne surveillance platform, gets final operational nod, states the Hindu. Sportspersons will now be allowed to carry javelins and bulky sports equipment on trains, even if they exceed the prescribed dimensions, according to the Railway Ministry, except pole vaults, informs the Pioneer. Another headline in the Pioneer writes, government expands QR code tracking to key drug categories to curb counterfeits. And finally, millions breathe easy. As the Times of India reports, CBSE students already in standards 7th to 9th with foreign language can keep their current combination till 10th. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be a major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारो चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 8:30 हुए हैं। सौरभ कार्यक्रम में आइए सुनते हैं वार्ता। हल्दी घाटी भारतीय इतिहास का अप्रतिम युद्ध। वार्ताकार हैं डॉक्टर भंवरलाल भादानी।
3: 28 फरवरी 1572 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के दिन से ही महाराणा प्रताप को मुगल बादशाह अकबर के साथ होने वाले संभावित युद्ध का आभास हो गया था, इसलिए वह भावी संघर्ष की तैयारियों में लग गया था, जिसके लिए उसने सर्वप्रथम अपनी सिसोदिया बिरादरी के जागीरदारों, गैर सिसोदिया राजपूत वंशों के नायकों, मुगल सत्ता विरोधी शक्तियों एवं अपने शासकीय सहयोगियों से युद्ध की तैयारी के विषय में गहन विचार विमर्श करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन इस संभावित महासंग्राम की तैयारी में वह इस क्षेत्र के निवासी बीलों की भागीदारी को भी निश्चित करना चाहता था, इसलिए उसने उनके नायक राणा पूंजा से भी बातचीत करके इसे अंतिम रूप दे दिया। इस प्रकार की तैयारियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिसोदिया नायक ने संभावित संग्राम को व्यापकता प्रदान करने का प्रयास किया था। आखिर में वीरों के लिए महा उत्सव का वह दिन आ पहुंचा जो 18 जून 1576 ईस्वी का था। मेवाड़ के योद्धा इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यह दिन मेवाड़ इतिहास के लिए ऐतिहासिक पर्व के समतुल्य रहा है। इस दिन खंडौर नामक स्थान पर महाराणा प्रताप एवं मुगल सेना के मध्य भयंकर संघर्ष हुआ था, जो इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। एक पक्ष अपने वंश के गौरव और अपने पैतृक राज्य की सुरक्षा हेतु कृत संकल्प होकर युद्ध क्षेत्र में डटा था, तो दूसरा पक्ष मेवाड़ को मुगल साम्राज्य का अभिन्न अंग बनाना चाहता था। इसलिए आगरा से कूच करके मुगल सेना मेवाड़ की धरती पर आकर उसके गौरव का भंजन करने युद्ध भूमि में आ डटी थी। दोनों पक्षों में प्रथम पक्ष प्रतिरोधक था जबकि दूसरा आक्रामक था। वास्तविक जंग से पूर्व मुगल बादशाह अकबर एवं सिसोदिया नायक महाराणा प्रताप के मध्य मस्तिष्क युद्ध हुआ था। इस संघर्ष के पूर्व 1567 ईस्वी में अकबर को चित्तौड़ पर अधिपति करने में लगभग 6 महीने लग गए थे।

इसलिए इस अभियान का नेतृत्व खुद अकबर ने न करके आमेर के कछवाहा राजकुमार मानसिंह को सेनानायक का दायित्व सौंपा था। इसकी पृष्ठभूमि में भोजन के प्रसंग को लेकर प्रताप एवं मानसिंह के मध्य हुए विवाद में कछवाहा राजकुमार को अपमान का घूंट पीना पड़ा था, जब प्रताप ने उसके संग भोजन करने से इनकार कर दिया था। इसलिए मुगल बादशाह ने दो कारणों से मानसिंह को कमान सुपुर्द की थी। प्रथम, अपमान से घायल राजकुमार द्वारा प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा, एवं द्वितीय, पूर्व में सिसोदिया वंश के अधीन राज्य का अपने स्वामी राज्य के विरुद्ध युद्ध। इसका माकूल जवाब प्रताप ने सिसोदिया सेना की हरावल की कमान अफगान सेना नायक हकीम खान सूर एवं दाहिने बाग की कमान ग्वालियर के पूर्व शासक रामशाह तंवर को सौंप कर दिया था। इसके अतिरिक्त चित्तौड़ युद्ध के नायक जैमल मेहरतिया का पुत्र रामदास मेहरतिया भी हकीम खान सूर के साथ था। ये तीनों अलग अलग कारणों से मुगल बादशाह से शत्रुता रखते थे। प्रथम, अफगानों के साम्राज्य को ध्वस्त किए जाने से, द्वितीय, ग्वालियर के राज्य से रामशाह को बेदखल करने के कारण, इन तृतीय, अकबर द्वारा चित्तौड़ युद्ध के समय रामदास मेहरतिया के पिता जैमल की गोली मारकर हत्या करने के कारण तीनों पक्ष अकबर से प्रतिशोध लेने हेतु कटिबद्ध थे। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि युद्ध की रणनीति के प्रश्न पर महाराणा प्रताप ने अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित कर दी थी। इसके अतिरिक्त इस युद्ध की उल्लेखनीय बात यह थी कि दोनों पक्षों के लिए यह एक विशुद्ध राजनीतिक युद्ध था। अकबर का मकसद अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापना का था, जबकि प्रताप के लिए अपने पैतृक राज्य की सुरक्षा, उसके गौरव एवं अपनी स्वायत्तता बरकरार रखना था। दोनों पक्ष इस बात के लिए सजग थे कि कोई इस युद्ध को हिंदू मुस्लिम संघर्ष की संज्ञा न दे सके, इसीलिए मुगल सेना का नेतृत्व राजपूत सेना नायक के हाथ में था, जबकि सिसोदिया सेना की कमान इस्लाम के अनुयायी हकीम खान सूर के पास थी। प्रताप ने ऐसा करके अपने दादा राणा सांगा का अनुसरण किया था। बाबर के विरुद्ध 1526 ईस्वी में लड़े गए खानवा के युद्ध में इस्लाम की अनुयायी हसन खां मेवाती की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। हल्दीघाटी युद्ध का नेतृत्व हकीम खां सूर को सौंपकर प्रताप अपने दादा राणा सांगा से आगे निकल गया था, जो परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम था। हल्दीघाटी युद्ध भारतीय इतिहास में निश्चित ही पुरातत्व मुगल कालीन इतिहास की एक विशिष्ट घटना के रूप में प्रसिद्ध है, एवं इसे अविस्मरणीय बनाने में भारतीय एवं विदेशी इतिहासकारों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। इस महासंग्राम में महाराणा प्रताप के साहस एवं शौर्य की प्रशंसा शत्रु सेना के कट्टरपंथी इतिहासकार बदायूं तक ने किए। वह लिखता है, महाराणा का हाथी मेवाड़ का ध्वज लहराता हुआ दर्रे से बाहर निकला, सेना के दक्षिणी ओर महाराणा प्रताप ने काजी खां मुल्ला पर आक्रमण किया और सेना का विनाश करते हुए वह सेना के मध्य तक पहुंच गया, जिस सीकरी के सभी शेखजादे भाग निकले। प्रताप के हौसले की प्रशंसा के साथ इस्लाम का समर्थक इतिहासकार ग्वालियर के पूर्व शासक रामशाह तंवर द्वारा युद्ध में प्रदर्शित अद्भुत वीरता की प्रशंसा करता है। लेकिन इस कुटिल इतिहासकार को हरावल में नियुक्त सेना नायक का नाम तक लेना गवारा नहीं हुआ। जिस सैन्य दल ने अपने हमले से मुगल सेना में खलबली मचा दी थी, इसका कारण इस दस्ते का नेतृत्व हकीम खां सूर के हाथों में था, जिसके नेतृत्व में जैमल मेहरतिया का बेटा रामदास मेहरतिया भी था। वह इस्लाम के किसी भी अनुयायी को मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए नहीं दर्शाना चाहता था। बदायूनी का अनुसरण अबुल फजल जैसे महान इतिहासकार ने भी किया, जिसका कारण दोनों के मध्य उद्देश्यों की समानता थी। प्रताप की सेना के जबरदस्त प्रारंभिक हमले से मुगल सेना में न केवल भगदड़ मचा दी थी, बल्कि मुगल सैनिक भेड़ों के झुंड के समान भाग खड़े हुए थे। राजपूत टुकड़ी का नायक राजा लूणकर्ण और यहां तक कि मुगलों के जुजारी योद्धा, जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, जिनमें बहारा के सैयद काजी खान और सीकरी के शेखजादे मुख्य थे, वे सब मैदान छोड़कर 5-6 कोस अर्थात 12 से 15 मील तक भाग गए थे। काजी खान के नेतृत्व में वाले सैन्य दल का तो और भी बुरा हाल था, जिनका श्रृंगार करते हुए वीर प्रताप सेना के मध्य तक पहुंच गया था। उस समय उसका

0: भद्र रूप देखकर मुगल सैनिक दहशत में आ गए थे। इस भागती हुई सेना को देखकर चंदावल में नियुक्त मेहतर खान ने ढोल बजाकर हल्ला करते हुए कहा, बादशाह अकबर सेना के साथ युद्ध मैदान में आ गए हैं। इस वाक्य ने भागती सेना में संजीवनी का काम किया। युद्ध में सामान्यतः ऐसी युक्तियां कारगर सिद्ध होती है। महाभारत युद्ध में भी इसी प्रकार की युक्ति का सहारा लिया गया था, जब अश्वत्थामा की मृत्यु की मिथ्या सूचना पाकर गुरु द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिए थे या युद्ध में मारे गए थे। दोनों युद्ध में युक्ति का आधार असत्य था, झूठ था। महाभारत युद्ध में उत्पन्न स्थिति के विपरीत प्रताप एवं उसकी सेना ने मुगल सेना पर आक्रमण और तेज कर दिए। सिसोदिया नायक ने मुगल सेना नायक मानसिंह पर भयंकर आक्रमण किया, हमले भाले से हमला किया, लेकिन उसने झुककर इसका बचाव कर लिया। इसी प्रकार आक्रमण करते हुए प्रताप शत्रु सेना के मध्य तक गया और घिर गया, लेकिन उसने युद्ध जारी रखा। राणा को चारों ओर से घिरा देखकर झाला बीदा ने महाराणा के सिर से राजकीय छत्र को उतारकर अपने शरीर पर धारण कर लिया और युद्ध करते हुए जूझते हुए शहीद हो गया। युद्ध के हालात बदलते देखकर प्रताप को घायल चेतक के साथ रणभूमि से बाहर निकालकर गोविंदा की ओर ले जाया गया। माणा प्रताप की शत्रु सेना के विरुद्ध प्रारंभिक विजय उसके साहस और शौर्य की दास्ता बयां करती है। इतने बड़े साम्राज्य की विशाल सेना ने कभी भी सिसोदिया शायक को विचलित नहीं किया था, बल्कि अपने एवं अपने सेना नायकों के हौसले के बल पर आक्रमण करके शत्रु सेना के पैर उखाड़ दिए थे एवं उन्हें 15 मील तक खदेड़ कर उनके हौसले पस्त कर दिए थे। इस आक्रमण ने सिसोदिया सेना की विजय लगभग तय कर दी थी, लेकिन बादशाह के आने की झूठी घोषणा ने भागते सैनिकों में संजीवनी का संचार किया एवं परिणाम तो दोनों सेनाओं के मध्य भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें स्थिति बदल गई एवं सिसोदिया सेना की पराजय हुई। लेकिन इसके साथ ही यह बात भी सही है कि हल्दी घाटी युद्ध की इस विजय की विजय पूर्ण नहीं थी, बल्कि दीर्घकालीन संघर्ष की शुरुआत थी। निश्चित ही एक ऐसा संग्राम था जिसमें एक ओर मुगलों की शक्तिशाली सेना थी तो दूसरी ओर प्रताप का साहस और आत्मविश्वास था। हल्दी घाटी के इस ऐतिहासिक सैनिक अभियान में सूरफ पठानों, ग्वालियर के तोमरों, झालाओं और राठौड़ों की सक्रिय भूमिका थी, जिनके बलिदान की अनुगूंज हल्दी घाटी स्थित रक्त तलाई में आज भी सुनी जा सकती है। इसके अतिरिक्त कीका यानी कि प्रताप के अन्यायी भक्त भीलों के शौर्य की कहानी को रेखांकित किए बिना हल्दी घाटी संघर्ष की दास्तान अधूरी रहेगी। गोविंदा परिक्षेत्र में बसे भीलों के मुगल सैनिकों को दिन में तारे दिखा दिए थे। इनके अतिरिक्त मेवाड़ की ऐसी कौन सी जाति थी जिसके प्रतिनिधि ने इस संग्राम में भागीदारी न निभाई हो। इस आधार पर कहा जा सकता है कि एक प्रकार से युद्ध साम्राज्यवादी शक्ति के विरुद्ध मेवाड़ का जनसंघर्ष था, जिसको इस अंजाम तक पहुंचाने का श्रेय सिर्फ महाराणा प्रताप को जाता है।
1: सौरभ कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता हल्दी घाटी भारतीय इतिहास का अप्रतिम युद्ध। वार्ताकार थे डॉक्टर भूमरलाल भादानी।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोल हमारू चैनल है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में।
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का।

अगले ऑप्शन बहुत ही सुगम संगीत कलाकार थे असरार हुसैन। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोल मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 9 बजने वाले हैं। कुछ पहले मैं आपसे ना

नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटाए। देश के विभिन्न हिस्सों में मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है और प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मानसून की पहली बारिश हुई। अगले 4 से 5 दिनों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत प्रदेश के प्रमुख शहरों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में प्रस्तावित राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड को अधिसूचित करने की प्रक्रिया को गति देने के निर्देश दिए हैं। इससे भवनों में ऊर्जा की खपत को कम किया जा सकेगा। मुख्य सचिव ने इस कोड के अनुपालन मैकेनिज्म को भी प्रभावी बनाने के निर्देश दिए ताकि प्रदेश में भवन निर्माण के क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्रोत्साहन दिया जा सके। मुख्य सचिव ने यह निर्देश कल शासन सचिवालय में प्रदेश में एनर्जी ट्रांजिशन पर गठित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। मुख्य सचिव ने सरकारी भवनों में रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि इससे राजकीय कार्यस्थलों पर बिजली की बचत को प्रोत्साहन मिला है। बैठक में ऊर्जा सचिव आरती डोगरा ने ग्रिड की स्थिरता, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के क्रियान्वयन सहित ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया।

किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय रक्षा बलों का एक दल भारतीय नौसेना के 2 जहाजों के साथ समारोह में भाग लेगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी से बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव

0: की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। सुझाव साझा करने का आज अंतिम दिन है। देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से रविवार को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत जन्म से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों और विशेष रूप से बनाए गए पोलियो बूथों पर यह दवा पिलाई जाएगी। इस दिन खुराक से वंचित रहे बच्चों को 29 और 30 जून को स्वास्थ्य कर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर दवा पिलाएंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज से उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की यह परीक्षा इसी महीने की 21 तारीख को आयोजित हुई थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशूरा ए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य, न्याय और नेकी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। प्रदेश भर में इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले जाएंगे। पाली में बांस, लकड़ी और रंग बिरंगे चमकीले कागजों तथा कपड़ों से ताजिए बनाए गए हैं। जुलूस को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं और यातायात मार्ग में बदलाव किया गया है। सवाईमाधोपुर में भी विशेष तैयारियां की गई हैं। मातमी धुनों के साथ विभिन्न मोहल्लों से ताजिए निकाले जाएंगे। इस दौरान समाज के लोगों ने छबील लगाकर ठंडे पेय पदार्थ पिलाने की भी व्यवस्था की है। चूरू में मुस्लिम समाज द्वारा बीती रात कत्ल की रात मनाई गई और शहर से 10 से अधिक ताजिए निकाले गए। इन जुलूसों में मोमिनों द्वारा हैरत अंगेज करतब भी दिखाए गए। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी की है। नए पासपोर्ट बनाने या पासपोर्ट को रिन्यू करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार ये नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने का शुल्क ₹5,000 होगा। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने का शुल्क ₹3,500 होगा और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए राशि ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट का शुल्क ₹1,500 तथा 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट का ₹2,000 है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रीय नशा मुक्ति क्विज की शुरुआत की जा रही है। इस क्विज का उद्देश्य युवाओं को नशे के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ तथा नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। ये क्विज देश भर में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन क्विज में अगले महीने की 15 तारीख तक भाग ले सकेंगे। इसी कड़ी में प्रदेश में भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं। सवाईमाधोपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और चिकित्सा विभाग की ओर से कल नशा छोड़ो खुशहाल जीवन जोड़ो थीम पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। सवाईमाधोपुर में बाघ संरक्षण के प्रयास बढ़ाने और वन्य जीवों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर मंथन के उद्देश्य से 5वां रॉयल रणथंबोर इंटरनेशनल टाइगर वीक ITW आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कंजर्व इंडियाज फाइनेस्ट टाइगर थीम पर आयोजित ये कार्यक्रम 28 जून तक चलेगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के वन्यजीव प्रेमी विशेषज्ञ शामिल होंगे।
1: 3 दिवसीय इस आयोजन में देश भर के नीति निर्माता, पर्यावरणविद,

0: पर्यटन उद्योग और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि शामिल होकर बाघ संरक्षण तथा वन्य जीवों की सुरक्षा संरक्षण पर गहन मंथन करेंगे। इनमें पूर्व न्यायाधीश, पूर्व राज्यपाल, इकोलॉजिस्ट, फोटोग्राफर, मूवी मेकर अपने विचार रखेंगे। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरणीय सरोकारों को मजबूत करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को 11 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया जाएगा। कंजर्वेशन के अतिरिक्त वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पेंटिंग प्रतियोगिता होगी तथा अग्रिम पंक्ति में तैनात वन कर्मियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत भी की जाएगी। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर।
1: प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मानसून की पहली बारिश हुई। राजधानी जयपुर में करीब एक घंटे तक तेज हवाओं के साथ हुई बरसात से निचले इलाकों के घरों और दुकानों में पानी भर गया। कई स्थानों पर पेड़ गिर गए। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, कोटा, लूणकरणसर, दौसा, धौलपुर, झालावाड़ और जोधपुर सहित कुछ अन्य स्थानों पर भी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में आगामी 4-5 दिनों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि आज से जुलाई के पहले सप्ताह तक पश्चिमी तथा पूर्वी राजस्थान में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटाए। देश के विभिन्न हिस्सों में मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। और प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मानसून की पहली बारिश हुई। अगले 4-5 दिनों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर की डोली मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत के कार्यक्रम में स्वाति शर्मा का गाया ये लोक।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे स्वाति शर्मा का गायन लोकगीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं गांधी चर्चा। आज का विषय है खिलाफत सम्मेलन में भाषण। वाचक स्वर श्री प्रमोद कुमार शर्मा का है, प्रस्तुति श्री अशोक कुमार की है, कार्यक्रम का संयोजन श्री अमित सिंह का।

चर्चा के तमाम श्रोताओं को हमारा नमस्कार। प्रिय श्रोताओं, आज के इस अंक में हम लेकर आए हैं पूज्य बापू का एक भाषण, जो कि अंग्रेजी सर्च लाइट में 23/9/1925 को प्रकाशित हुआ था। सम्मेलन की कार्रवाई कुरान की एक आयत के पाठ और मंगल गान के साथ शुरू की गई। उसके बाद गांधी जी ने भाषण दिया। उन्होंने कहा कि जब मुझे सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया, तभी मैंने मंत्री से कह दिया था कि मुझसे भाषण देने के लिए न कहा जाए, पर मुझे बताया गया कि सम्मेलन में कुछ महिलाओं के भी आने की आशा है और मुझे उन्हें खद्दर और चरखे के विषय में बताना चाहिए, और मुझे तो उनसे खद्दर के बारे में कुछ कहने का लोभ है ही, इसलिए मैंने फौरन भाषण देना स्वीकार कर लिया। लोगों को मैंने ये कहते सुना कि 1921 में गांधी हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में बोला करता था, पर अब ऐसा नहीं करता। लेकिन जैसे ही उससे खद्दर और चरखे पर बोलने का अनुरोध किया जाता है, वो फौरन तैयार हो जाता है। उसकी ये बात सही है, पर मेरा जवाब भी हाजिर है। मैंने अपने भाषणों और समाचार पत्रों लेखों द्वारा आपसे बहुत बार कहा है कि हिंदू और मुसलमान दोनों पर मेरा कोई प्रभाव नहीं रहा। आज दोनों जातियां

से किस की तरह न तो मेरी बात सुनती है न ही मेरे कई अनुसार चलने को तैयार है। यही बात मैं अली भाइयों के बारे में कह सकता हूँ। उनका प्रभाव भी दोनों जातियों पर से उठ गया है। ऐसी दशा में भगवान से प्रार्थना करते रहने के सिवाय मैं और क्या कर सकता हूँ। जब कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता तो मैं किसी से कुछ कहने क्यों जाऊं। इसीलिए इस विषय पर चुप रहना मैं ज्यादा ठीक समझता हूँ। दूसरे मामलों में जहां तक देश के लिए स्वराज्य प्राप्त करने की बात है, शिक्षित जनता पर मेरा प्रभाव नहीं रहा, पर मुझे दोनों बातों में पूरा विश्वास है। मैं आज भी असहयोग के पक्ष में हूँ। असहयोग के सिद्धांत में मेरा वैसा ही विश्वास अब भी है जितना कि हिंदू मुस्लिम एकता में था, लेकिन आज मुझे दोनों जातियों में भी एकता दिखाई देती है। इसलिए आज मैं उसके बारे में कुछ न कहकर आपसे खद्दर के बारे में फिर कुछ कहना चाहूंगा। जो हिंदू और मुसलमान भारत को अपना देश मानते हैं, उनके लिए खादी का बहुत महत्व है। आपको ये समझ लेना चाहिए कि हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए गांव के गरीबों के द्वारा काटे गए सूत से बने खद्दर को छोड़कर अन्य वस्त्र धारण करना पाप है। हिंदू और मुसलमान जी भरकर एक दूसरे से लड़ें, एक दूसरे से सिर फोड़कर खून की नदियां बहा दें, पर सरकार को उसमें हस्तक्षेप न करने दें। ये सब करें, इससे पतित भले हो जाएं, लेकिन अब ये कहना छोड़ दें कि हम पहनेंगे तो बस मैनचेस्टर, लंकाशायर या जापान या मुंबई की मिलों का कपड़ा ही पहनेंगे। खद्दर को छोड़कर मुंबई की मिलों का कपड़ा पहनना भी ठीक नहीं। आप अच्छी तरह जानते हैं भारत के गांव में ऐसे लाखों हिंदू मुसलमान हैं जिन्हें दोनों वक्तों का खाना भी नसीब नहीं होता। अपनी हाल की बंगाल यात्रा के दौरान वहां के गांव में ऐसे लोगों की दयनीय दशा मैं अपनी आंखों से देख पाया हूँ। यदि आप उन्हें मेरी नजर से देख सके तो आपकी आंखें भर आएंगी। अतराई के समीपवर्ती गांव में 90% लोग मुसलमान हैं। इस क्षेत्र में बाबू सतीश चंद्र दास गुप्त डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय के निर्देशन में अपना खादी प्रचार कार्य चला रहे हैं। इसके फलस्वरूप इस क्षेत्र की स्त्रियां यदि महीने में 2-2.5 रुपए भी कमा पाती हैं तो बहुत प्रसन्न होती हैं। जिन्हें किसी प्रकार की कमी नहीं संभव है, वे इसके महत्व को न समझे और इसका मजाक उड़ाएं। परंतु खेती से जिन परिवारों की कुल आय 7 रुपए प्रति मास है, उनके लिए ये 2-2.5 रुपए भी बहुत है। जो सिपाही और अर्धरी सरकारी नौकर हैं, वे भी इसका महत्व आसानी से समझ सकते हैं। अपने वेतन में 1 रुपए की भी तरक्की होने पर वे निहायत खुश होते हैं और अपने अफसरों का बहुत आभार मानते हैं। अंत में गांधी जी ने भावविवल होकर लोगों से अनुरोध किया कि वे गाँव में भूखे मरने वाले लाखों लोगों की खातिर खादी और चरखे को अपनाएं, इन्हीं गरीबों की खातिर कताई करें और सूत मुझे दे ताकि मैं खादी को सस्ता कर सकूं। इसका लाभ मुख्यतया तो इन भूख से पीड़ित गरीबों को होगा, पर अंत में इससे सबको लाभ होगा। मैंने एक मुसलमान को कहते हुए सुना कि क्या महात्मा जी का दिमाग खराब हो गया है जो ये आशा कर रहे हैं कि मुसलमान खद्दर पहनने लग जाएंगे। संयुक्त प्रांत के मुसलमानों को भी लो पहनने के लिए नैन सुख मलमल जैसा बढ़िया कपड़ा चाहिए। उन्हें मोटा और घटिया खद्दर अच्छा नहीं लगता। मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। मुसलमान भी भारत में पैदा हुए हैं और भारत के ही हैं। उनमें भी मानवीयता की भावना है और उनको भी गांव के लाखों भूखे गरीबों से हमदर्दी है। मुझे आशा है कि वे भी खद्दर को अपनाएंगे, बल्कि बहुत मुसलमान तो पहले ही से अपना चुके हैं। खद्दर को अपनाने से 2 उद्देश्य सिद्ध होंगे। एक तो आपको अपने लिए कपड़ा मिल जाएगा, दूसरे आप गांव के लाखों भूखे गरीबों की सहायता कर सकेंगे। खुदा के वास्ते और गांव के लाखों भूखे गरीबों के वास्ते आप सब आज ही बल्कि इसी क्षण चरखा और कताई को अपना लें। श्रोताओं, ये था पूज्य बापू का भाषण जो अंग्रेजी के सच लाइट अखबार में 23/9/1925 को प्रकाशित हुआ था। आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा। आज का विषय था खिलाफत सम्मेलन में भाषण। वाचक से श्री प्रमोद कुमार शर्मा का था, प्रस्तुति श्री अशोक कुमार की, कार्यक्रम संयोजन श्री अमित सिंह का था। मीडियम वेव 215.05 मीटर पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

सिंह सीआईईटी प्रस्तुत करता है नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अगली बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर की ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहां घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहां पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहां के बहुत से जीवों की आंखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है।

0: जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजु गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोबाकोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे ट्रूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे ट्रूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाई है मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता

0: योग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
1: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट अल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
0: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
1: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
2: Stephen, happy birthday to you!
3: Thank you.
4: Congratulations.
3: Thank you, Dom. Thank you so very much. Hi, Martin. How are you?
2: No, fine.
3: Thanks for coming. Please come in.
2: Yes.
3: Why not?
2: Come. Hey.
3: Come.
2: John, please come here.
3: Yes.
2: Hey.

कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी

0: उनके शरीर की सारी मांसपेशियां पूरी तरह से अकड़ गई और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाई देकर और उसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं नहीं,
2: देखिए आप धीरे रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चल।

0: चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक

な、ちゃんと、どうせ言えない。

0: Ağacım Luka.
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हाँ में हाँ मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
2: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक

0: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थी। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुशदिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुई।
1: मैं जानती थी कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। पचासी में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
0: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
1: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
0: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमेरिकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
2: प्रोफेसर डेनिस
3: जी,
2: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
3: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
2: ओह।
3: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
2: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
3: जी।
2: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
3: तो लीजिए सुनिए।
4: टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड द आउटलुक फॉर द डिसेबल्ड। पीपल लाइक मी कैन नाउ मूव अराउंड इंडिपेंडेंटली एंड दे कैन कम्युनिकेट।
0: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
1: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हम

0: जाएगा।
1: उनके सभी शोधों की यह विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
0: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
2: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
1: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
0: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
2: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
1: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
3: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
0: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
4: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग ना होने दें।
1: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
0: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित है, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन है। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
1: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस रहेनुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
6: चलो बच्चों आ जाओ, पहेली टाइम, आ जाओ सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहेली।
7: हाँ।
6: गुड़िया गौरव सब तैयार?
7: हाँ,
6: वेरी गुड। तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली।

0: मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
1: आग का गोला?
0: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। बूझे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दो प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
2: सूरज। वाह, एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार
3: हो। रोज बहुत आसान पूछते हो।
2: ओफो, क्या करूं, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं।
3: अगली बार में बहुत मुश्किल।
2: हाँ, मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूं, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियां तुम्हारे पास होती है ना? कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
3: मुझे पता है, सूरज आग का गोला होता है।
2: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
1: वो तारा होता है।
2: हाँ, ये भी बिल्कुल ठीक।
1: वो रात और दिन भी बनाता है।
2: एकदम सही, एकदम सही।
3: धूप भी देता है।
2: बिल्कुल, धूप भी देता है। सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
3: धूप से अच्छी बात भी होती है।
2: हाँ, हमें क्या मिलता है पता है उससे?
3: विटामिन डी।
2: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो। विटामिन डी मिलता है, अरे तुम्हें पता है? बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे।
3: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
2: हाँ बिल्कुल,
3: पेड़ को खाना भी देता है।
2: बिल्कुल, एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं
3: देखे। धीरे धीरे रात घूमती, जब भी सुबह रात होती जाती है।
2: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं। और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
3: हाँ,
1: जब ही तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
2: हाँ, हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर, हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
3: मौसी, जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
2: आए हाय, क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं, चलती हुई ट्रेन से, लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं।
3: हम चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
2: ना।
3: मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
2: हाँ, और सर्दियों में अच्छा लगता है। तो बच्चों, सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
3: वैसे वो बहुत बड़ा भी होता है।
2: बहुत बड़ा होता है,
3: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
2: हम क्योंकि कहीं
3: दूर होता है, इसलिए
2: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इससे छोटे,
3: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है। वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
2: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
4: सर्दी।
2: ऐसी वाली सर्दी ना? अच्छी लगती है सर्दी?
3: हाँ, और सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
2: हाँ, शुक्र है गर्मी में नहीं लगती है। सूरज आग का गोला लेकिन,
4: सूरज आग का गोला लेकिन,
2: फिर भी जीवन दाता है,
4: फिर भी जीवन दाता है।
2: धरती काटे चक्कर इसके,
4: धरती काटे चक्कर इसके,
2: लगे ये चलता जाता है,
4: लगे ये चलता जाता है।
2: सर्दी गर्मी बनते इससे,
4: सर्दी गर्मी बनते इससे,
2: ये दिन रात बनाता है,
4: ये दिन रात बनाता है।
2: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक,
4: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक,
2: सूरज ये
4: कहलाता है।
2: शाबाश, सूरज ये कहलाता है, सूरज ये कहलाता है। चलो, अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर

0: कर पहले आज ही बता दो।
1: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है, ठीक है?
2: नहीं आएगी आना मौसी?
1: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
0: हमने देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
1: मैं तो डर रही हूँ भाई, कल आऊँ कि नहीं आऊँ।
0: वो भी दस पूछेंगे,
1: दस पहेलियाँ। और चलो मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना। डर जाती
0: है। और आपके कुल मिला के 70 हो जाएंगे।
1: 70 हो जाएंगे? कैसे एकदम 70?
2: नहीं 80 हो जाएंगे।
1: 100 हो जाएंगे? 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुँचे मैं जा रही हूँ। टाटा बाय बाय।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम

105 मीटर पर हम आकाशवाणी बीकानेर के इडवल नेरो चैनल से बोल रहे हैं। एफएम पर आप हमें 101.6 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। सवेरे के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अभी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अभी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर।

0: दिया।
1: अब मिल जाएगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में।
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।

0: एक जमाने से कहानी है सुना है आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड बेस OTT ऐप नाउ।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना तो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेना के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मानव क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

शाहिल लुधियानवी के लिखे गीत को संगीत दिया रवि ने। गीत को गाया था महेंद्र कपूर ने और फिल्म थी गुमराह। प्रोग्राम भोले बिसरे गीत आप इस वक्त सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोमरू चैनल से। लीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए शकील बताइने के लिखे गीत को स्वर दिया है मोहम्मद रफी ने। फिल्म का नाम है जादवी का चांद।

आरटी बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने। गीत को गाया था लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों ने, और फिल्म का नाम था बहारों के सपने। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मरु चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए आप सुनिए नौशाद के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने, गीत को गाया है तलत महमूद ने, और फिल्म का नाम है बाबुल।

लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म मेरे महबूब का ये खूबसूरत गीत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप इस वक्त सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है हशरत जयपुरी ने। फिल्म का नाम है काली घटा और गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

0: शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में, गीत को लिखा था हर्षा जयपुरी ने, फिल्म थी आरजू और स्वर था मोहम्मद रफी का। लीजिए कार्यक्रम में अब सुनिए पप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में, गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, गीत को गाया है लता मंगेशकर और पप्पी लहरी ने, और फिल्म का नाम है आपकी खातिर।
1: तेरा एक बंगला हो, बंगले में गाड़ी हो,
2: गाड़ी में मेरे साथ

मंगेशकर, किशोर कुमार और सुरेश वाडेकर के का गाया बेमिसाल फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा था आलम बख्शी ने, संगीत आरडी बर्मन का। कार्यक्रम के आखिर में सुनिए गीत और संगीत रविंद्र जैन का। गीत को गाया है हेमलता ने, फिल्म पिया वही दुल्हन, माफ कीजिएगा, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। तो आइए सुनते हैं हेमलता की आवाज में ये खूबसूरत गीत।

तारक महमूद के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत इस वक्त आप सुन रहे थे आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.5 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर दिन के 12 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कायल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। अमरीका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक हुई। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो NCB द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हो रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ाई में लगे लोगों के प्रयासों की सराहना की है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के गिरोहों को खत्म कर दिया गया है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
1: LPG की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक LPG की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है।

इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। सुगम संगीत के हमारे आज के कलाकार थे पंकज उदास। हम आकाशवाणी बीकानेर के हमारे चैनल से बोल रहे हैं। मिलन देव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 107.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 12:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। प्रोग्राम का पहला गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने और फिल्म का नाम है द ट्रेन।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए हेमलता की आवाज में फिल्म सुनैना का ये गीत, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। दिन के एक बजने वाले कुछ पलों में आप आकाशवाणी चौपजनर के आमिर चैनल से हिंदी में समाचार, हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। आज देश राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को नमन कर रहा है। उनकी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया से

0: संदेश में कहा है कि साहित्य के एक तेजस्वी प्रकाश स्तंभ के रूप में उनकी रचनाओं ने भारतीयों की कई पीढ़ियों में देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव की भावना जगाई है। उनका समृद्ध साहित्यिक योगदान आज भी लोगों को प्रेरित करता है और राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारे सामूहिक संकल्प को मजबूत करता है। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी चट्टोपाध्याय जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा है कि उनकी अमर रचनाएं और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत विचार युगों युगों तक देशवासियों को राष्ट्र सेवा और मातृभूमि के प्रति समर्पण की प्रेरणा देते रहेंगे। इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाने वाला मुहर्रम आज पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश भर में जुलूसों के साथ मातम मनाया जा रहा है और मजलिसें आयोजित की जा रही हैं। राजधानी जयपुर में आकर्षक सजावट के साथ छोटे बड़े ताजियों के साथ बड़ी संख्या में मोमिन मातमी प्रदर्शन कर रहे हैं। दिन भर निकलने वाले ये जुलूस और ताजिये रात में कर्बला में सुपुर्द खाक किए जाएंगे। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में विशेष धार्मिक रस्में अदा की जा रही हैं। यहां दुआ, फातिहा और नियाज का आयोजन हो रहा है। जालौर में मेहंदी की रस्म अदा कर ताजिये मुहर्रम पोल से शुरू होकर विभिन्न मोहल्लों से गुजरते हुए बड़ी पोल पहुंचे हैं। यहां से इन्हें कर्बला के मैदान में ले जाया जा रहा है। कई स्थानों पर छबीलें लगाई गई हैं। सभी जिलों में जुलूस को लेकर स्थानीय प्रशासन ने आम लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और यातायात मार्ग में बदलाव किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान त्याग, साहस, दृढ़ विश्वास और मानवीय मूल्य का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रीय नशा मुक्ति क्विज की शुरुआत की गई है। ये क्विज देश भर में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन क्विज में अगले महीने की 15 तारीख तक भाग ले सकेंगे। इसी कड़ी में प्रदेश में भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं। पाली में नगर निगम की ओर से बैनर और पोस्टर के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वस्थ, सुरक्षित तथा खुशहाल समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाने का आह्वान किया जा रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी से जागरूकता फैलाने, नशा मुक्ति में लगे लोगों का समर्थन करने और युवाओं को नशे की बजाय आशा, स्वास्थ्य और उद्देश्य को चुनने के लिए प्रेरित करने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से आम जन से नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लेने की अपील की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज से उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की परीक्षा इसी महीने की 21 तारीख को आयोजित हुई थी। देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से रविवार को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत जन्म से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों और विशेष रूप से बनाए गए पोलियो बूथों पर यह दवा पिलाई जाएगी। इस दिन खुराक से वंचित रहे बच्चों को 29 और 30 जून को स्वास्थ्य कर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर दवा पिलाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दिन के 1:05 हुए हैं। मैंने आप सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत।

0: कार्यक्रम में स्वागत है सभी बहनों का। आज के इस कार्यक्रम में गीतों, बातों और जानकारियों का खजाना लेकर हाजिर हैं आपकी दो सखियां किरण शर्मा और
1: मैं माधुरी शर्मा। नमस्कार बहनों, गर्मी का रंग बदला, मौसम का ढंग बदला, तपिश कुछ कम हुई तो उमस ने बेहाल किया हमें, फुहारों और रिमझिम ने खुशहाल किया फिर से जीवन को। जी हाँ, बरसात के मौसम ने अपनी आवाजाही शुरू कर दी है और हम उसके आगमन की तैयारी में जुटे हैं, है ना किरण?
0: बिल्कुल
1: हाँ।
0: और खैर सखियों, बरसाती मौसम में कुछ सावधानियां रखते हुए और कुछ मीठे नमकीन व्यंजनों का लुत्फ आप भी उठा रहे होंगे ना?
1: हाँ, मुझे तो ये भी लग रहा है कि किरण तुम भी कुछ मीठे और नमकीन व्यंजन बना कर लाई हो, है ना? क्योंकि मौसम है बरसात का। जी हाँ, बरसाती मौसम शुरू हो गया है लेकिन है अभी गर्मी। और मौसम की तैयारी घर के अंदर भी हमें करनी होती है और घर से बाहर भी करनी होती है।
0: कुछ क्या समझ गई?
1: हाँ हाँ
0: जी, आपका कहना है कि मौसम भी अपना रंग बदल रहा है ना? बिल्कुल सही। क्यों कहते हैं ना कि समय की गति रुकती नहीं है, दिन से रात और रात से दिन होना ही है और मौसम भी परिवर्तनशील है।
1: बिल्कुल,
0: धूप और छाया की तरह जीवन में सुख दुख का क्रम भी बना रहता है।
1: बिल्कुल बना रहता है।
0: उस वक्त आवश्यकता होती है धैर्य रूपी गहना धारण करने की।
1: हाँ,
0: वृक्षों की छाया और हरियाली किसको नहीं लुभाती नहीं?
1: बिल्कुल सही कहा किरण तुमने। शुद्ध हवा के लिए वृक्ष, शुद्ध जल के लिए प्रकृतिक संरक्षण, इन सबके साथ जीवों पर दया और विद्याधन, इसको हमसे कोई भी नहीं छीन सकता, ऐसा हम सब इंसान कर सकते हैं। साथ ही रिश्तों को जोड़े रखने के लिए आपसी विश्वास और सत्य जीवन जीने के लिए योग, ये सब चीजें बहुत जरूरी है, है ना?
0: बिल्कुल। और हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी दुरुस्त रहना जरूरी है, तो इसके लिए चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: सखियों, हमारी सरकार ने इन 12 वर्षों में अनेक कार्य किए हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या रोजगार हो। इस क्षेत्र में विशेषकर महिला सशक्तिकरण हेतु सरकार ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।
1: बहुत काम किए किरण, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने। अगर हम बात करें डिजिटल इंडिया की, तो उसके तहत महिलाएं कई क्षेत्रों में सशक्त भी हो रही है
0: ना। सही कहा माधुर जी, सबसे बड़ा बदलाव हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। आज महिलाएं और लड़कियां मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई, ऑनलाइन कोर्स और कौशल विकास कर रही है ना।
1: हाँ, इससे वो अपना विकास भी कर रही है किरण। किरण, यूपीआई और नेट बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट का उपयोग करके सुरक्षित लेन देन का कार्य भी महिलाएं कर रही है। इसके अलावा महिलाएं अपने हस्तशिल्प, कपड़े, घरेलू उत्पाद जैसे सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें पोस्ट कर रही है, साथ में सोशल मीडिया और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इनको बेच भी रही है। इसका उनको फायदा भी मिल रहा है।
0: बिल्कुल माधुरी जी, हमारी सखियां डिजिटल कौशल सीख कर नौकरी, फ्रीलांसिंग और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। ऑनलाइन सुरक्षा, साइबर अपराध से बचाव और सुरक्षित इंटरनेट उपयोग हेतु प्रशिक्षण भी ले रही है।
1: हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। अभी आप इंटरनेट का उपयोग कर रही हैं, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो फिर आपके बहुत सारी जानकारी लीक हो सकती है, बहुत सारे काम इसके विपरीत भी हो सकते हैं। तो इसकी सुरक्षा के लिए भी आपको ट्रेनिंग लेना या प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी है। हमारी सखियां मोबाइल एप्स और ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से स्वास्थ्य, बैंकिंग और अन्य आवश्यक सुविधाएं तक अपनी पहुंच बना रही है। जैसे अपने घर से ही वो टिकट बनवा लेती है, रेलवे की बुकिंग करवा लेती है या अपने लिए कोई टैक्सी बुक कर लेती है तुरंत ही, और घर बैठे ही अपना सामान भी वो
0: फीस भर लेती है।
1: बहुत सारे काम घर बैठे ही कर लेती है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे बहुत सारी सुविधाएं उन्हें मिल रही है, समय भी बचा है उनका, है ना।
0: बिल्कुल, आज महिला रोजगार, व्यवसाय, वित्तीय स्वतंत्रता और डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में नई पहचान तो बनाई रही है, बल्कि आत्मनिर्भर बनकर अपने पिता और पति के साथ कदम से कदम
1: मिलाकर चल रही है। ये बहुत सही बात कही है। जहां इस डिजिटल ने स्त्रियों को सक्षम किया है,

0: और सारे काम कम समय में हो जाते हैं। वहीं किसी का गौरव बढ़ा रही है ये महिलाएं इस तरह के उपयोग करके, और किसी की परवरिश का मान बढ़ा रही है। और जहां बात पति की आती है तो एक नारी इन सभी कामों के बदलते रूप में भी अपने आप को साक्षी इतना समझती है कि भाई इतने सारे काम करने के बाद सिर्फ पति से सिर्फ क्या चाहती है,
1: बस इतना सही तो।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: तथ्य रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: अब कुछ चर्चा करें महिलाओं की कानूनी साक्षरता विषय पर,
2: है ना। बिल्कुल, सबसे पहले तो साक्षर होना महिलाओं का कितना जरूरी है ना।
1: हाँ बिल्कुल है, साक्षरता जीवन में आगे बढ़ने का आधार है। इससे व्यक्ति पढ़ लिख कर सही निर्णय लेना सीखता है।
2: बिल्कुल, साक्षर व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को भी अच्छी तरह समझता है और हर व्यक्ति साक्षर होगा तभी हमारा समाज और देश तेजी से विकास कर पाएगा।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, साक्षरता की प्रगति और समृद्धि पहली सीढ़ी है हमारी प्रगति की, है ना।
2: पर इस साक्षरता के साथ साथ कानूनी साक्षर तभी कितनी जरूरी है ना।
1: बिल्कुल जरूरी है। हाँ किरण, कानूनी साक्षरता से महिलाओं को अपने अधिकारों कानून की जानकारी मिलती है, इससे वे अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज उठा सकती है।
2: बिल्कुल, यदि महिलाओं को कानून की जानकारी होगी तो वे घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न और अन्य समस्याओं में सही सहायता प्राप्त कर सकेगी।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। इसके अलावा सरकारी योजनाओं, कानूनी सहायता और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के लिए भी वो होशियार हो पाएगी और समझ पाएगी कि इसे क्या करना है।
2: बिल्कुल, और सरकारी योजनाओं जैसे कानूनी सहायता हो या शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को वो बेहतर ढंग से समझ पाएगी।
1: और कानूनी जानकारी महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाती है और उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम भी बनाती है। किरण
2: बिल्कुल,
1: इसलिए परिवार विद्यालय समाज को मिलकर महिलाओं की कानूनी साक्षरता का प्रचार प्रसार करना चाहिए
2: और एक जागरूक और कानूनी रूप से साक्षर महिला न केवल स्वयं सशक्त होती है बल्कि अपने परिवार और समाज को भी आगे बढ़ाती है ना।
1: सही कहा तुमने, कानूनी साक्षरता ही महिला सशक्तिकरण की मजबूत नींव है। तो आज हम इसी संबंधित एक वार्ता सुनाने वाले हैं अपनी मैनों को, है ना।
2: बिल्कुल,
1: उसका विषय है
2: पहचाने अपने कानूनी अधिकार। वार्ताकार है सुहानी शर्मा।
3: हमारे समाज में महिलाएं शिक्षित होने के बावजूद भी अपने कानून के अधिकारों से वे अनभिज्ञ हैं और हालांकि ये कहा भी जाए कि भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रचार प्रसार केंद्रीय और राज्य सरकार के माध्यम से एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से काफी हद तक किया जा सका है, पर ये कहा जाए कि कुछ अनपढ़ और कुछ अशिक्षित महिलाओं को तो कानून की जानकारी नहीं हो सकती, पर ये कहना भी उचित होगा कि कुछ ऐसी शिक्षित महिलाएं भी हैं जिनको कानून की जानकारी बिल्कुल नहीं है और ना ही वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। इसीलिए आज के सामाजिक परिवेश को हम अगर देखें तो महिलाओं को कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक भी है ताकि वे अपने पर हो रहे जो भी अत्याचार है, वो जो शोषण है, वो उससे बच सके। भारत में महिलाओं के बहुत से कानूनी अधिकार हैं और उन्हें प्रदान भी किए गए हैं जिनकी जानकारी मैं आज आप सभी महिलाओं को देना जा रही हूँ। आपने सुना ही होगा घरेलू हिंसा। देखिए, महिलाएं घर में सुरक्षा

सुरक्षित कही जाती हैं, पर आज ऐसा समय भी आ चुका है कि महिलाएं घर में सुरक्षित नहीं हैं। बिल्कुल, मैं घरेलू हिंसा की बात बताना चाहूंगी कि महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में जो घरेलू हिंसा है उसके लिए स्त्री संरक्षण अधिनियम 2005 के संबंध में मैं आज आपसे चर्चा करना चाहती हूं कि इस कानून में चाहे स्त्री शादीशुदा है चाहे वह अविवाहित है, स्त्रियां अपने साथ हो रहे अन्याय, प्रताड़ना या फिर जो भी उसके साथ घरेलू हिंसा के संबंध में होने जा रहा है या चल रहा है उसके खिलाफ बेहिचक वो अपना मुकदमा दर्ज करा सकती हैं। जिस घर में वो रह रही हैं, जहां पे वो घरेलू हिंसा हो रही है उसी घर में रहकर वो कानून का सहारा ले सकती है। उसको अपने घर से भी बेदखल नहीं किया जाएगा यदि वो उस घर में रहने वाले सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती हो तो। ऐसे में एक सुविधा और भी है कि इसमें महिला खुद सीधे न्यायालय जा सकती है, उसको किसी वकील की भी आवश्यकता नहीं है। ये महिला को एक विशेष अधिकार दिया गया है कि वो अपनी घरेलू हिंसा को रोकने के लिए, अपने बचाव के लिए वो सीधे न्यायालय जाए, उसकी किसी वकील की आवश्यकता नहीं रहती। इसके अलावा उसी घर से वो अपने भरण पोषण से भी अपनी प्राप्ति कर सकती है और अपने अधिकारों के साथ वो उसी परिवार के साथ रह भी सकती है। अब आप ये सोचेंगे कि घरेलू हिंसा है क्या, तो मैं ये बताना चाहूंगी हमारी महिलाओं को कि घरेलू हिंसा किस श्रेणी में आता है और घरेलू हिंसा का क्या अर्थ है। देखिए, उस महिला के स्वास्थ्य की सुरक्षा, जीवन, शारीरिक अंग, मानसिक हानि और उसके साथ किया हुआ किसी भी रूप में दुर्व्यवहार और यौन दुर्व्यवहार, मौखिक भावनात्मक ठेस पहुंचाना, उसके रिश्तेदारों तक भी उसको कह के उसको प्रताड़ित करना और उसका और उसके रिश्तेदारों का उपहास करना और उसके मौखिक भावनात्मक दुर्व्यवहार उसके साथ आए दिन करना, जैसे अनादर करना या उपहास करना, आप समझ ही रहे होंगे किस तरह से, ऐसे बहुत सारी आदि और भी बातें हैं जिससे उसको मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से ठेस पहुंचती है। ये सभी बातें घरेलू हिंसा में आती है। और मेरी प्यारी बहनों और महिलाओं को विशेष तौर से बताना चाहूंगी कि आप बिल्कुल घबराएं नहीं, जो ये घरेलू हिंसा जो आज बढ़ रही है घर में, जहां महिलाएं सुरक्षित अपने घर में भी नहीं है, आप सीधे न्यायालय जाएं, किसी वकील की जरूरत नहीं है, आपको फीस देने की भी जरूरत नहीं है किसी वकील को, और आप अपना मुकदमा दर्ज करा सकती हैं। आपकी सुरक्षा का खास तौर से ध्यान रखा जाएगा न्यायालय की तरफ से। दंड का प्रावधान अगर घरेलू हिंसा में देखें तो अलग अलग तरह से होता है, अलग अलग तरीके से है कि किसी में 2 वर्ष है, किसी में 5 वर्ष है, तो अलग अलग तरह से जैसे जैसे आपका केस होता है, जिस हिसाब से हिंसाएं हैं कम है या ज्यादा है, उस हिसाब से दंड का प्रावधान न्यायालय अपने हिसाब से जरूर देती है। अब आप आ जाइए कि एक महिला है, वो पढ़ी लिखी है पर नौकरी नहीं कर रही है, पर उसके भरण पोषण की उसको बहुत आवश्यकता है। तो अगर हम बात करें इसी प्रकार महिलाओं के भरण पोषण की, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दंड प्रक्रिया यानी CRPC की धारा 125 में कोई भी स्त्री भरण पोषण के लिए दावा कर सकती है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, लेकिन आवश्यक यह है कि वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। यदि वो सरकारी नौकरी में है और अपना जीवन निर्वाह कर सकती है तो वो भरण पोषण का दावा नहीं करेगी, पर यदि कोई ऐसी स्त्री है जो महिला है, जो ससुराल से पीड़ित है, पति ने उसको छोड़ दिया है या वो अपनी जीवन यापिका नहीं कर पा रही है, तो बेशक वो न्यायालय में जाके अपने लिए भरण पोषण का मुकदमा दर्ज कर सकती है। न्यायालय देखेगा कि उसको कितना भरण पोषण देना है। उसमें न्यायालय की एक सुविधा ये रहेगी कि आपके स्टेटस को देखा जाएगा कि कितना उसको भरण पोषण दिया जाए, जितना न्यायालय उचित समझेगी उसी के अनुसार। और एक बात और विशेष रहेगी, इस समय उसके पति की आय भी देखी जाएगी कि उसका भरण पोषण किस तरह से, उसका दैनिक भत्ता या जो आय भत्ता है या जो मासिक आय दी जाएगी न्यायालय की तरफ से वो कितनी तय होगी, पर आप अपने भरण पोषण के अधिकारी हैं। इसी प्रकार अगर आप हिंदू विधि और मुस्लिम विधि के अंतर्गत भी हैं, दोनों के अंदर ही भरण पोषण का आपको अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार आप ये अगर हम CRPC की धारा में आगे जाते हैं, धारा 498 जो कि काफी प्रचलित है, धारा 498A, उसके अंदर IPC की धारा 498A में महिलाओं को दहेज के लिए जो तंग कर रहे हैं, जो कि मैं ये कहना चाहूंगी कि आज के समय में महिलाओं का हर चौथा और पांचवा केस जो जा रहा है न्यायालय में वो दहेज को लेके ही जा रहा है, उससे परेशान जो भी स्त्री है वो उसके खिलाफ मुकदमा कर सकती है। धारा 406 में जो उसका स्त्री धन है, यानी कि स्त्री धन क्या है, अब आप ये सोचेंगे स्त्री धन का मतलब जो भी उसके पास गिफ्ट आया है या उसके परिवार वालों ने उसको दिया है या जो उसके द्वारा खरीदा गया है, वह सभी स्त्री धन 406 में मुकदमा करके वो अपना प्राप्त कर सकती है। वर्तमान में एक बहुत ही एक बड़ी प्रॉब्लम या कह सकते हैं समस्याएं जो चल रही है, आम समस्या

महिला और बालिकाओं की सुरक्षा को लेके उसमें एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है बलात्कार। बहुत ही अच्छी परिभाषा दी कि बलात्कार के बारे में हमारे राज्य और केंद्र सरकार ने, और हमारे संशोधन जो किए गए बलात्कार के बारे में आए दिन नए नए संशोधन भी रहे। धारा 375 में सिर्फ बलात्कार की परिभाषा दी गई है, पर धारा 376 में आईपीसी की धारा 376 है उसमें दंड बताया गया कि वर्तमान में संशोधन करने की इस अपराध के लिए गंभीर से गंभीर दंड दिया जा सकता है। अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग जोड़ी गई हैं, पर अगर आप इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं या फिर आप अपने खिलाफ कुछ भी जो हो रहा है अन्याय उसके लिए बचाव करना चाहते हैं, तो बेशक आप सीधे न्यायालय जाइए और आपके लिए जो भी न्यायालय करेगा वो उचित से उचित करेगा। बहुत सारे केस में अलग अलग दंड दिए गए, इसमें आजीवन कारावास भी है, और अगर सामूहिक बलात्संग है तो फांसी तक का भी प्रावधान न्यायालय देता है, जो कि एक कठोर दंड है। इसी प्रकार वर्तमान में एक बहुत ही फैशन में है लिव इन रिलेशनशिप। लड़कियां या बालिकाएं एक विश्वास के साथ लिव इन रिलेशन में बड़े बड़े शहरों में अपने एक पुरुष साथी के साथ बिल्कुल साथ रह रही हैं और अपना जीवन यापन कर रही हैं। पर लिव इन रिलेशनशिप में वो सभी बातें क्या आएगी जो एक शादीशुदा स्त्री के साथ न्यायालय जो आपको अधिकार देता है या कानून जो अधिकार देता है, बिल्कुल आएंगी। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में मैं यह बताना चाहूंगी कि जो इसके अंतर्गत महिला पार्टनर को वही दर्जा प्राप्त होता है जो किसी विवाहित को मिलना चाहिए। यदि कोई लड़की लिव इन रिलेशन में रह रही है, वो महिला उसके साथ पुरुष प्रताड़ना दे रहा है, घरेलू हिंसा की तरह प्रताड़ित कर रहा है, तो उसके खिलाफ बेशक वो मुकदमा दर्ज करा सकती है। ऐसे रिलेशन से उत्पन्न यदि कोई संतान भी हो जाती है तो बिल्कुल वो वैध मानी जाती है, जैसे आपकी शादी के समय जो संतान उत्पन्न होती है उसी प्रकार से वो वैध मानी जाएगी, और उसका संपत्ति का भी वही अधिकार होगा जो कि एक शादीशुदा स्त्री और पुरुष के विवाह के पश्चात जो संतान उत्पन्न होती है उसका जो वैध अधिकार है। बिल्कुल लिव इन रिलेशनशिप में भी अगर ये कोई संतान उत्पन्न होती है तो सभी उसको वैध अधिकार प्राप्त होंगे। ऐसे ही अगर आमतौर पर हम आगे चर्चा करें तो संपत्ति के अधिकार के बारे में भी हम महिलाओं के बारे में जानना चाहते ही होंगे कि एक अविवाहित और विवाहित महिला को संपत्ति का कितना अधिकार है। ये जरूरी नहीं है कि महिला विवाहित ही हो, अविवाहित है तो उसको अपने परिवार से कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा। संपत्ति का आज के समय में बराबर का हिस्सा दिया जाता है। इसी प्रकार किसी भी स्त्री का अपने स्त्री धन का पूर्ण अधिकार होता है। पति की मृत्यु के बाद उसके पति के संपत्ति में उसका पूर्ण हिस्सेदारी रहेगी। हमारे संविधान में महिलाओं के लिए अनुच्छेद 15(3) में आरक्षण की व्यवस्था भी सरकारी नौकरियों में की गई है। ऐसा इसलिए करा गया कि उनकी जो विशेष स्थिति है महिलाओं को देखते हुए, इस कारण से संविधान ने यह व्यवस्था हमारी महिलाओं के लिए की गई। अनुच्छेद 21 में सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में प्राण देहिक स्वतंत्रता के संबंध में कुछ बहुत से ऐसे न्यायिक निर्णय दिए गए, जिसमें विशाखा का मामला बहुत प्रचलित है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया था कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ, जहां वो काम कर रही हैं, जहां कामकाजी महिलाएं हैं जो अपने ऑफिस में अपने घर से निकल के अकेली काम कर रही हैं, उन महिलाओं के साथ यदि यौन उत्पीड़न, 2013 के अंदर ये संशोधन किया गया, रोकने हेतु एक बहुत ही लंबी चौड़ी दिशा निर्देश दी गई। इसके अंदर संविधान में समान काम करने वालों को समान वेतन तो प्राप्त होगा ही, पर उस महिला को उसको ये अधिकार प्राप्त होगा कि बिना किसी रुकावट के सीधे न्यायालय जाके उसके खिलाफ वो मुकदमा दर्ज कर सकती है, और उसको सुरक्षित रखने के लिए वो सभी सुरक्षाएं प्रदान की जाएंगी कि वो नौकरी करते हुए वो मुकदमा दर्ज कर सकती है। ऐसा समस्या नहीं आए कि वो जिस ऑफिस में या जिस कार्यस्थल पे काम कर रही है, और अगर वो मुकदमा उसके खिलाफ भी जिसके साथ वो काम कर रही है अगर दर्ज कर दिया जाए तो उसकी असुरक्षा ना रहे, तो उसकी सुरक्षा का भी प्रावधान न्यायालय की तरफ से उसको ऑफिस में भी दिया जाता है, उस कार्यस्थल पे भी दिया जाता है। कामकाजी महिलाएं सुबह 7 बजे से शाम को अगर 5 बजे तक कंटिन्यू लगातार काम कर रही हैं तो उनको 5 घंटे बाद रेस्ट देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा उनका जो शौचालय है वो सुविधा भी बिल्कुल महिलाओं की अलग होनी चाहिए। 30 से अधिक महिलाएं हैं, अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसके लिए एक अलग से रूम हो जहां पे वो अपने बच्चे को अगर दुग्धपान कराना चाहती है तो उसके रूम की फैसिलिटी होनी चाहिए, और उसकी सुरक्षा और उसके मान सम्मान को लेते हुए न्यायालय और कानून ये कहना चाहेगा कि कार्यस्थल पे जो भी महिलाएं रहती हैं उसकी गरिमा को बरकरार रखा जाए। यदि वो कार्यस्थल पे महिलाओं को कहीं भी यौन उत्पीड़न या मानसिक या शारीरिक या उपहास भी किया जाएगा तो उसके खिलाफ वो सीधा मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया अधिकार महिलाओं को आज के समय को देख के हम सबको प्राप्त है। आगे अगर हम चर्चा करें अधिकारों के बारे में, तो कानून के अधिकारों में सबसे अच्छी बात एक ये है कि
महिलाओं की मान मर्यादा व गरिमा का

0: ध्यान में रखते हुए महिलाओं को एक बहुत ही अच्छे अधिकार हमें प्राप्त हैं, अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। अशिष्ट रोपण क्या है? स्त्री के रूप, उसके शरीर या उसके किसी भी भाग का अशिष्ट रीति से प्रचार करना या प्रचारित करना, चाहे वो कोई पुस्तक हो, पेपर हो, उसकी स्लाइड हो, विज्ञापन हो, फिल्म हो, फोटोग्राफ हो, रेखा चित्र हो या पेंटिंग है, उसके द्वारा महिलाओं के शरीर या उसके किसी भी भाग का अगर कोई प्रदर्शन करता है या प्रकाशित करता है तो उस श्रेणी को हम बोलते हैं अशिष्ट रूपेण। यह अधिकार महिलाओं को प्राप्त है। अधिकतम इसकी सजा 5 वर्ष है और 1,00,000 का इसका जुर्माना तय है। इसी बारे में अगर बात करें, जैसे यौन अपराध जो बढ़ रहे हैं उसमें भी जो संरक्षण अधिनियम बालिकाओं को प्राप्त है, उसमें जो 18 वर्ष से कम की जो बालिकाएं हैं उनके लिए भी ये अधिनियम बना। उसमें आपको ये मैं बताना चाहूंगी कि वो दंड फांसी तक का है, काफी कठोर दंड है फांसी तक का। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं महिलाओं की एक सुरक्षा को दृष्टि से देखते हुए, कुछ ऐसी महिलाएं जो अविवाहित हैं वो भी गोद ले सकती हैं, और जो अविवाहित है और इसके साथ विवाहित है वो भी गोद ले सकती हैं। पर विवाहित स्त्री के साथ एक बात यह होनी चाहिए कि उसकी पति की सहमति जरूरी है, अविवाहिता को सहमति की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ केवल वयस्क होनी चाहिए, बालिग होनी चाहिए और अपने कार्य में सही निपुण रहे, अपना जीवन यापन करने में वो सही रहे, तो वो कोई भी बच्चे को वो गोद ले सकती है। हालांकि सरकार के द्वारा यह निर्णय के अनुसार एक अकेली रहने वाली महिला को खुद के नाम पर, हम कहते हैं जैसे कि राशन कार्ड नहीं बनवा सकती, पर ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं जो अकेली रह रही हैं वो राशन कार्ड भी बनवा सकती हैं। ऐसे चलते हुए आगे और ऐसे कुछ अधिकार हमें प्राप्त हैं महिलाओं के, जैसे कि आप सभी जानते होंगे फ्री एजुकेशन का भी है, जो महिलाएं एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकती कानून के द्वारा उनको फ्री एजुकेशन ग्रेजुएशन तक वो अपना हासिल कर सकती हैं। आमतौर पर हम यह भी कह सकते हैं कि महिलाओं के अधिकारों के बारे में अगर हम जानकारी देना चाहें तो बहुत समय चाहिए, और महिलाओं के अधिकार में राज्य सरकार ने और हमारे संविधान ने इतने अधिकार, इतने अच्छे अधिकार महिलाओं को दिए हैं, जो हमें जानकारी प्राप्त होनी बहुत आवश्यक है। आज महिलाओं के अधिकार के विषय में कुछ हद तक मैं ये कहना चाहूंगी कि अखंडता और उसकी स्वायत्तता और उसके शारीरिक करने की आज़ादी, यौन हिंसा से उसकी मुक्ति, मत देने की उसकी आज़ादी, सार्वजनिक पद धारण करने की आज़ादी और कानूनी कारोबार में प्रवेश करने की आज़ादी, पारिवारिक कानून में बराबर हक लेना और काम करने की आज़ादी, और समाज में अपने बराबर गरिमा को हमेशा बनाए रखने की आज़ादी, समान वेतन प्राप्त करने की आज़ादी और प्रजनन करने के अधिकारों की भी आज़ादी, नारी के सम्मान व गरिमा को देखते हुए ही हमारे संविधान ने ये अधिकार उनको प्रदान किए हैं, जिससे वह समाज में अपनी मान मर्यादा व प्रतिष्ठा व सम्मान को कायम कर सके।
1: भैया, अभी आपने ये वार्ता सुनी, महिला पहचाने अपने कानूनी अधिकार, वार्ताकार थी सुहानी शर्मा।
2: बिल्कुल माधुरी जी, ये तो थे अपने कानूनी अधिकार, पर हमारे बहुत से कर्तव्य भी है परिवार के प्रति, तो कभी हमारे जो रिश्तेदार है उनके प्रति, पर हाँ हमारी भारतीय सेना के प्रति भी तो हमारे बहुत से कर्तव्य है। आइए करते हैं हमारी सेना का सम्मान कैलाश खेर जी इस गीत के साथ।
3: नमस्कार, मैं हूँ कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम, और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: किरण, हम अक्सर त्योहारों और पर्वों की बात करते हैं और इन त्योहारों में हम कई दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं, है ना।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही कई तरह के व्यंजन भी बनाते हैं। आज जब हम इसके जिस त्योहार की हम बात करने जा रहे हैं वो है,
1: बिल्कुल माधुर जी, त्योहार की तो हम बात करते हैं लेकिन आज जिसकी हम बात करें वो है शोक का महीना, दिवस।
0: हाँ
1: माधुर जी, आप शायद मुहर्रम की ही बात कर रही हैं।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: मैंने मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना होता है, इसकी 10वीं तारीख जिसे आशूरा कहा जाता है बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है।
0: हाँ किरण, इस दिन इमाम हुसैन ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था, है ना।
1: सखियो, लगभग 1400 साल पहले 680 ईस्वी में यजीद ने खुद को इस्लामी दुनिया का खलीफा घोषित कर दिया था। ये एक क्रूर और अत्याचारी शासक था और इस्लाम सिद्धांतों के खिलाफ चलता था। उसने हजरत इमाम हुसैन, जो उस समय के बहुत सम्मानित धार्मिक नेता थे, उसे अपने शासन को समर्थन देने और बियत यानी सहमति देने को कहा। इमाम हुसैन ने अपने धर्म और मूल्यों की रक्षा के लिए इस अत्याचारी यजीद की अधीनता स्वीकार करने से साफ मना कर दिया।
0: बिल्कुल, जब इमाम हुसैन को अपनी और अपने परिवार की जान का खतरा लगने लगा तो ये शांति कायम रखने के लिए मदीना छोड़कर इराक जाने लगे, लेकिन रास्ते में यजीद की हजारों सैनिकों वाली विशाल सेना ने इस तरह 72 लोगों के काफिले की घेराबंदी कर दी और उनको कई दिनों तक पानी भी

0: कंडीशन गर्मी में और बिना पानी के और बिना पानी के उन्हें रहना पड़ा और रास्ते भी बंद कर दिए, जिससे उनके छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं को एक एक बूंद पानी भी नसीब नहीं हुआ है ना।
1: बिल्कुल। और आखिर आसुरा का यानी मुहर्रम महीने के 10वें दिन यानी आज ही के दिन यजीद की सेना ने उनके काफिले पर आक्रमण किया। अच्छा। होते हुए उन्होंने इमाम हुसैन के साथियों ने वफादारी से उनका सामना करते हुए प्राणों का बलिदान दिया। उसमें 6 महीने का बालक भी था।
0: अच्छा।
1: आज का दिन इसी गम और शहादत की याद दिलाता है।
0: हाँ, तो एक शहादत का ये एक त्योहार है ना। और इमाम हुसैन के मकबरे के प्रतीक के रूप में बांस, रंगीन कागजात और लकड़ी के सुंदर ताजे बनाए जाते हैं और जुलूस भी निकाले जाते हैं, है ना।
1: बिल्कुल। करबला की कहानी हमें ये सिखाती है कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, इंसान को अन्याय, अत्याचार और अधर्म के साथ समझौता नहीं करना चाहिए।
0: हाँ किरण, ऐसे व्यक्तित्व इतिहास के पन्नों में हमेशा उनकी एक खास जगह होती है और याद किए जाते हैं। इसी के साथ सुनते हैं ये गीत।

0: अब हम बात करते हैं इको फ्रेंडली घर की सजावट। जी हाँ, जो प्रकृति के साथ तालमेल खाती हो या प्रकृति के विपरीत ना हो, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने माधुरी जी।
0: हाँ।
1: और इसके तहत हम बहुत से ऐसे आइटम हैं जो हम घर पर बना सकती हैं, जैसे बांस से बनी वस्तुएं,
0: बांस की बनी टोकरियों से सजावट कर सकते हैं, उनसे बहुत सारे फर्नीचर भी लगा सकते हैं बांस के।
1: मतलब ऐसे आइटम जो वातावरण के साथ और हमारे घर के साथ सामंजस्य बने,
0: बिल्कुल सही है, और उससे कोई नुकसान भी नहीं। जैसे प्लास्टिक तो घर पर नुकसान करता है,
1: सब्जियां हैं, अगर हम बांस की टोकरी में रखें तो काफी समय तक
0: सुरक्षित रहती है, खराब भी नहीं होती। इसके अलावा भी सजावट में हम बांस का प्रयोग,
1: आजकल मार्केट में रंग बिरंगे प्लास्टिक के गमले आते हैं, उसकी जगह हम मिट्टी के जो गमले हैं उनका ही प्रयोग,
0: उसमें पौधों को सांस भी आती है, सुंदरता भी आ रही है।
1: और हाँ, चटाई की जब हम बात करें, कालीन की बात करें, तो प्लास्टिक की जो है ना वो उसको अवॉइड करके जूट की चटाई,
0: जूट की चटाइयां, कपास की चटाइयां, ये भी ले सकते हैं काम में।
1: जो खिलौने हैं उसमें लकड़ी के बने जो खिलौने हैं बच्चों,
0: वो हाँ पहले भी चला करते थे लकड़ी के बने खिलौने, और मिट्टी के खिलौने भी बहुत ही सुंदर लगते हैं अगर आपके ड्राइंग में सजे होते हैं।
1: जो हमारे दीवार है उसको सजाने के लिए भी शोपीस भी आजकल मिलते हैं मिट्टी के, वो भी हम यूज ले सकते हैं। और इंडोर प्लांट है वो भी घर के,
0: हाँ पौधों से भी आप घर की सजावट कर सकते हैं, जैसे एरिका पाम है, लव लिली है, इससे घर में वातावरण भी शुद्ध होता है और साथ ही साथ आपका घर भी हरा भरा दिखता है और ठंडक रहती है।
1: और कपास और लीमन के पर्दे यूज ले, कुसुम भी वैसे यूज ले,
0: हाँ अच्छे लगते हैं,
1: बिल्कुल वो प्राकृतिक रेशों से बने होते हैं तो हमारे लिए जो सेहत के लिए वो फायदेमंद रहेंगे।
0: हाँ बिल्कुल।
1: और पता है माधुरी जी, जो नारियल की खोल है उसको हम
0: डेकोरेट कर सकते हैं, उसको कुछ भी नहीं बना सकते। जब हम बात करते हैं ना कि इन चीजों को, तो इनमें से जो हम यूज करते हैं सामान, वेस्ट कुछ भी नहीं होता, उनको हम बचा कर और रिसाइकिल करके यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है,
1: तो
0: आगे अपनी बहन माधुरी शर्मा।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा, युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए, इसका उद्देश्य मजबूत एआई आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय

0: करेगा
1: या हम मसीह पर विजय।
0: और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए
1: ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए,
0: दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
2: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
0: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती हैं। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमें करनी पड़ेगी।
2: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। एसआईटी ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
3: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ॉन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
4: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी 2 दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर

0: पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
1: FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
0: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
2: 60,000 students.
1: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
0: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिया निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के निहाची के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्टार की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 MCC सी

0: श्रीनिवास वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तदात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें दो भीष्म चोट भी शामिल है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमेरिका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा, युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया।

आकाशवाणी का ढोल हमारा चैनल है जो वही 215.95 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर दोपहर के 2:30 हुए हैं। नीचे सुनिए फिल्म संगीत। प्रोग्राम में पहले सुनिए अलका याग्निक और अभिजीत की आवाजों में फिल्म धड़कन का ये गीत। गीत को लिखा है समीर ने, संगीत नदीम श्रवण का।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में फिल्म कसूर का ये गीत। गीत को लिखा है समय ने और संगीत नदीम श्रवण का।

कास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: दोस्तों, कार्यक्रम के शुरुआत में हमने आपसे दो प्रश्न पूछे थे। अब वक्त है उन दोनों प्रश्नों के जवाब जानने का। पहला प्रश्न हमने आपसे पूछा था
1: कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध इंदौरी मालवीय आलू को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है,
0: जिसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। हमने आपसे दूसरा प्रश्न पूछा था
1: कि जून 2026 में भारत और किस देश के बीच अंतरिम व्यापार समझौते यानी कि इंटरिम ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर नई दिल्ली में उच्च स्तरीय वार्ता संपन्न हुई,
0: जिसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका।
1: और अब वक्त है दोस्तों रोजगार सूचना का। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों में नई भर्ती की आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया कर दिया गया है।
0: दोस्तों, इस भर्ती के माध्यम से दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों में जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, TGT टीचर, स्पेशल एजुकेटर, IT असिस्टेंट, लिफ्ट ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर सहित कई पदों पर भर्ती की जाएगी।
1: इस भर्ती के लिए आवेदन 16 जून से शुरू हो चुके हैं और इसके लिए अधिक जानकारी जैसे कि आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, इन सब के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट dssb.delhi.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
0: दोस्तों, इस भर्ती में आवेदन करने के लिए लास्ट डेट 15 जुलाई है, तो जल्द ही अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें और आवेदन कर दें और एग्जाम के लिए मेहनत में लग जाएं।
1: तो मैंने लगता प्रियंका कि जब भी मेहनत शब्द हमें सुनाई देता है तो हमारे मन में अक्सर एक ही तस्वीर बनती है, या तो कोई युवा रात रात भर पढ़ रहा है, या फिर कोई खिलाड़ी मैदान में पसीना बहा रहा है, या फिर कोई मजदूर धूप में काम कर रहा है। फिर हमें बताया जाता है कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन सच कहें दोस्तों तो ये लाइन इतनी बार दोहराई जा चुकी है कि अब इसमें मिठास तो कम और आदत ज़्यादा महसूस होती है।
0: हाँ कुमकुम, असल सवाल ये नहीं है कि मेहनत ज़रूरी है या नहीं, सवाल ये है कि मनचाही ज़िंदगी पाने के लिए मेहनत आखिर किस चीज़ की करनी पड़ती है।
1: क्योंकि दोस्तों कई बार लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी वो जीवन नहीं जी पाते जिसकी उनको चाहती या फिर कल्पना थी। वहीं कुछ लोग कम संघर्ष में भी आगे निकल जाते हैं। तो क्या मेहनत का सिद्धांत गलत है? नहीं, शायद हम मेहनत को समझने में गलती कर रहे हैं।
0: अक्सर दोस्तों हम मेहनत को घंटों में मापते हैं, जिसने ज्यादा घंटे लगाया वो ज्यादा मेहनती माना जाता है, लेकिन जीवन की सबसे कठिन मेहनत कभी कभी किसी मशीन की तरह लगातार काम करना नहीं बल्कि सही चुनाव करना होती है।
1: जैसे कि हम सोचते हैं कि इच्छा होना आसान है, लेकिन वास्तव में दोस्तों अपनी असली इच्छा को पहचानना भी एक कठिन काम है। कई बार हम पूरी जिंदगी किसी ऐसी मंजिल के पीछे भागते रहते हैं जो हमने खुद नहीं चुनी होती। जब वो मिल जाती है तब पता चलता है कि खुशी अभी भी कहीं दूर खड़ी है। इसलिए मन चाहे जिंदगी के लिए सबसे पहली मेहनत अपनी इच्छा को पहचानने की करिए।
0: हाँ दोस्तों, कुमकुम की ये बात बिल्कुल सही है कि मन चाहे जिंदगी जीने के लिए मेहनत तो करनी होगी, पर पहले मेहनत अपनी इच्छा को पहचानने की करनी चाहिए। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि आलस इंसान का दुश्मन है, लेकिन कई बार आलस उतना खतरनाक नहीं होता जितना भ्रम।

0: भ्रम यह है कि एक दिन अचानक सब ठीक हो जाएगा, भ्रम यह कि कोई विशेष अवसर आएगा और ज़िंदगी बदल जाएगी। जब तक इंसान इन भ्रमों में रहता है वो वास्तविक प्रयास नहीं कर पाता।
1: कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ किस्मत से होता है, कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ मेहनत से होता है। शायद दोनों ही बातें अधूरी है।
0: हाँ,
1: किस्मत दरवाज़ा खोल सकती है लेकिन उसके अंदर चलकर जाना मेहनत का काम है। अगर किसी व्यक्ति को एक शानदार अवसर मिल जाए और उसके लिए तैयार वो ना हो तो अवसर भी वो बेकार हो जाता है। दूसरी ओर कई बार लगातार तैयारी करते रहने वाले व्यक्ति को जब अवसर मिलता है तो लोग उसकी सफलता को किस्मत कह देते हैं।
0: इसलिए दोस्तों ध्यान रखिए कि मेहनत करना ज़रूरी है, और हाँ, मनचाही ज़िंदगी की कीमत सिर्फ पसीना नहीं बल्कि असफलताओं को सहने की क्षमता भी है। दुनिया बदलना आसान हो सकता है लेकिन अपनी आदतें बदलना बहुत कठिन है। सुबह जल्दी उठना, मोबाइल का थोड़ा सा कम यूज़ करना, कंसिस्टेंसी को बनाए रखना, ये साधारण लगने वाले काम रियल लाइफ में असाधारण मेहनत मांगते हैं।
1: इसलिए दोस्तों मन चाहे ज़िंदगी जीने के लिए हमें मेहनत करनी होगी। मेहनत का मतलब सिर्फ अधिक काम करना नहीं बल्कि खुद को समझना, सही दिशा चुनना, भ्रमों से बाहर निकलना और असफलताओं से सीखना और लगातार बेहतर बनते रहना है।
0: यानी कि दोस्तों अब मेहनत आज से शुरू कर दीजिए, क्योंकि सपने इंतज़ार कर सकते हैं लेकिन ज़िंदगी नहीं, क्योंकि ज़िंदगी है दो पल की।

0: इसी के साथ दोस्तों अब वक्त हो चला है कार्यक्रम में आपसे विदा लेने का, फिर मुलाकात होगी आपसे इसी कार्यक्रम पर। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। फिर मुलाकात होगी आपसे इसी कार्यक्रम पर। तब तक के लिए मैं प्रियंका सोनी
1: और मैं कुमकुम स्वामी,
0: हम करते हैं आप सभी को नमस्कार।

ये था युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। शाम के 5:55 हुए हैं। अब सुनिए हमारी सभा के कार्यक्रमों का विवरण।

आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से जिले की चिट्ठी शाम 6:42 पर। इसी केंद्र से उर्दू श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम गुलिस्तां रात्रि 10 बजे। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्रामीण जगत शाम 7 बजे। श्रोता सुनेंगे चर्चा वर्षा आधारित कृषि और खरीफ फसलें, आधुनिक कृषि उपकरण और मशीनें, दुग्ध उत्पादन संबल योजना राजस्थान, शिक्षित समाज विकसित समाज, साथ ही अन्य जानकारियां और लोक संगीत। कार्यक्रम ग्रामीण जगत शाम 7 बजे।

शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 10:30 पर। हमारी सभा में लोक संगीत होगा शाम 8:30 पर, रात्रि 8:30 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा शाम 7:45 पर। हमारी सभा के फिल्म संगीत के कार्यक्रम इस प्रकार हैं। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है आम्रपाली। फिल्म संगीत रात्रि 8:00 आप सुन सकेंगे। रात्रि 9:15 सुनिएगा फिल्म संगीत और रात्रि 9:30 फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से।

यह था हमारी सभा के कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बज रहे हैं। अब आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
2: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही अपने आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि AI विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।

0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों का त्वरित निवारण और व्यापार करने में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि 15 अगस्त से प्रभावी होने वाला भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता ब्रिटिश संसदीय इतिहास में सबसे तेजी से लागू होने वाला व्यापार समझौता बन जाएगा। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी। बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट मैच भारत और आयरलैंड के बीच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज कार्यक्रम में सुनिए फिल्म आम्रपाली के गीत। सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम आम्रपाली ही है क्योंकि कार्यक्रम है एक ही फिल्म से और इसे गाया है लता जी ने। गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

Akashwadi at 90. आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है आम्रपाली। सुनिए लता मंगेशकर को, गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन।

ये थे लता मंगेशकर और साथी, फिल्म का नाम आम्रपाली, गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और अब सुनिए शैलेंद्र का ये गीत शंकर जयकिशन की तर्ज, गायिका लता मंगेशकर।

ये थी लता मंगेशकर, गीतकार हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे आम्रपाली फिल्म के गीत। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है।

0: 105 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हो रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी और फिर राजस्थानी भाषा में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय आयोजन कल जयपुर में राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी की लॉन्चिंग होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मातम के बीच कर्बला में ताजिए दफनाए जा रहे हैं और प्रदेश में बीते 24 घंटों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज। मानसून के अगले हफ्ते तक और आगे बढ़ने की संभावना। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर जयपुर में कल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाले समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उद्योग तथा वाणिज्य विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण अनुदान और सब्सिडी के डमी चेक प्रदान करेंगे। वेरिको की योजनाओं के लाभार्थियों को भी भूमि आवंटन पत्र और ऑफर लेटर सौंपेंगे। प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी, ODOP कॉफी टेबल बुक और रैम्प पोर्टल भी लॉन्च किए जाएंगे। समारोह में रिको की डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी के आवंटन पत्र और ऑफर लेटर भी प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, राज्य मंत्री के विश्नोई सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया गया। युवाओं और नई पीढ़ी में नशे तथा मादक पदार्थों के बढ़ते इस्तेमाल को रोकने और उन्हें जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर देश प्रदेश में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। श्री शाह ने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान 1,18,00,000 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थों को जब्त किया गया है। उन्होंने कहा कि यह आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्यवाही को दर्शाते हैं।
2: इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 26 से 29 का जो रोडमैप है वो चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। पहला स्तंभ है एनफोर्समेंट, इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस। इसका उद्देश्य पूरे नेटवर्क पर लक्षित इंटेलिजेंस लीड कार्रवाई करें और उनके नेटवर्क को नष्ट कर दें। दूसरा है प्रीकर्सर्स एवं सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल। उत्पादन स्तर पर ही हमने नशे को रोकने की रणनीति अपनानी पड़ेगी और कैपेसिटी बिल्डिंग, कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग जो तंत्र को सक्षम बनाने के लिए और आधुनिक बनाने के लिए एक चौथे स्तंभ की रचना की गई है।
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम रखे गए। डीग में जिला कलेक्टर राजकुमार कसवां की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें लोगों को नशा मुक्त भारत अभियान की जानकारी दी गई। नागौर में साइकिल जागरूकता रैली निकालकर नशा नहीं करने का संदेश दिया गया। जैसलमेर में माए भारत के स्वयं सेवकों ने नशे के दुष्प्रभावों को लेकर आमजन को जागरूक किया। पाली के बाली में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान समाज को नशे के नुकसान से जागरूक किया गया और नशा मुक्त भारत के निर्माण में सहयोग करने का संदेश दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने

0: ने संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके तहत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। हालांकि जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल से आगामी 4 जुलाई से उड़ानें संचालित हो जाएंगी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में पत्रकारों को बताया कि नए टर्मिनल से हवाई सेवाएं शुरू होने से पश्चिमी राजस्थान की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यहां पर्यटन और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयां मिलेंगी।
1: जोधपुर का हवाई अड्डा केवल जोधपुर शहर के लिए नहीं, पूरे पश्चिम राजस्थान के लिए एयर कनेक्टिविटी का एक बड़ा साधन है। जिस तरह की डिमांड बढ़ी थी, उस बढ़ी हुई डिमांड के चलते हुए हमारे पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत दबाव भी था और ये मांग थी, आवश्यकता थी कि हम एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनाए। ये सपना 4 तारीख को साकार होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर शहीदों की याद में जुलूस के साथ ताजिये निकाले जा रहे हैं। इन्हें करबला मैदानों में परंपरागत तरीके से दफनाया जा रहा है। इससे पहले प्रदेश भर में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मजलिसें और धार्मिक सभाएं आयोजित की गई। जयपुर के रामगंज, दिल्ली रोड और चार दीवारी क्षेत्र में जगह जगह लंगर और पानी की छबीलें लगाई। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर मुहर्रम के मौके पर बड़ी संख्या में जायरीन ने फातिहा पढ़ी। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आज मुहर्रम की 10वीं तारीख आशुरा के अवसर पर अजमेर दरगाह शरीफ सहित जिले भर की मस्जिदों में अकीदत और एहतराम के साथ विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में फातिहा पढ़ा गया। वहीं देश भर से आए जायरीनों द्वारा नमाज अदा कर अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी जा रही है। दरगाह शरीफ से छोटी बड़ी ताजियों का जुलूस निकाला जा रहा है, जिसे फजर से पहले झालरा के में सहराब किया जाएगा। नलमद आदिच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आमजन से इस मानसून के दौरान अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने का आह्वान किया है। राज्यपाल ने आज जयपुर के निमेड़ा स्थित एक गौशाला में आयोजित धार्मिक आयोजन में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति भारतीय मूल्यों का आधार है। राज्यपाल ने गायों को चारा खिलाकर लोगों को जीवों के प्रति करुणा और दया भाव बनाए रखने का आग्रह किया। देश को सर्वाधिक सैन्यकर्मी देने वाला झुंझुनू जिले के वायु सैन्यकर्मी सुरेंद्र मोगा के सर्वोच्च बलिदान को नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट में शामिल किया गया है। सार्जेंट मोगा ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के लिए प्राण न्यौछावर किए थे। उनके साथ 5 अन्य जवानों को भी वेबसाइट के रोल ऑफ ऑनर में सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही युद्ध स्मारक की 3D वॉल पर भी सुरेंद्र मोगा का नाम अंकित किया गया है। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में एक प्रश्न के उत्तर में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद भारतीय सैनिकों की सही सूची देश को देने की बात कही थी। भीलवाड़ा में जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र की ओर से औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर लगाया गया। जिला महाप्रबंधक कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि इस अवसर पर युवा संबल मेला भी आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्यमी के तौर पर प्रोत्साहित करने और स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना था। झुंझुनू जिले के कुतुबपुरा गांव में नाबार्ड और डालमिया सेवा संस्थान की ओर से आज नॉन वाटर शेड परियोजना का शुभारंभ हुआ। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर आर रवि बाबू ने ग्रामीणों को वर्षा जल संरक्षण अपनाने और खेतों में अजोला और कम पानी की फसलें उगाने का आह्वान किया। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र में बैंकिंग सेवा के विस्तार और रोजगार परक प्रशिक्षण योजनाओं की शुरुआत की भी बात कही। और अब मौसम। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान पूर्वी और पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां

की गई है। इस दौरान दक्षिणी जिलों में भी कई जगह पर तेज बारिश रिकॉर्ड हुई। मौसम विभाग के अनुसार झालावाड़ जिले के अकलेरा में सर्वाधिक 5 सेंटीमीटर बारिश रिपोर्ट हुई। राजधानी जयपुर सहित आसपास के इलाकों में आज बादल छाए रहे और कई जगह पर बूंदाबांदी हुई। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग में प्री मानसून की बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। इस बीच मानसून गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ और भागों में भी आगे बढ़ा है। इसके अगले हफ्ते तक मध्य और उत्तरी भारत तक पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आईआरसीटीसी ने नया पर्यटन सर्किट डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर शुरू किया है। इसके लिए भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएगी। प्रायोगिक तौर पर शुरू होने वाली इस 11 दिन की रेल यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों को उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर जाने का मौका मिलेगा। इसके लिए आईआरसीटीसी के टूरिज्म पोर्टल पर या आईआरसीटीसी पर्यटन कार्यालयों पर बुकिंग कराई जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय आयोजन कल जयपुर में राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी की लॉन्चिंग होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मातम के बीच कर्बला में ताजिए दफनाए जा रहे हैं। और प्रदेश में बीते 24 घंटों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज। मॉनसून के अगले हफ्ते तक और आगे बढ़ने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख अजय सिंह शक्तावत ने तैयार किया है। इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाने वाला मातमी पर्व मुहर्रम आज श्रद्धा के साथ मनाया गया। जिले में सुबह से ही रंग बिरंगे ताजिए निकाले गए। इस दौरान मोमिनों ने हैरतअंगेज प्रदर्शन किए। इससे पहले प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए शहर की निगरानी बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए। शांति समिति की बैठक में जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक ने जुलूस के दौरान अफवाह, नशा, गुंडागर्दी या अव्यवस्था फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। साथ ही आमजन से शांति और सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की। पिछले दिनों पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी चित्तौड़गढ़ प्रवास पर रहे। राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष ने चित्तौड़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सहकारी संस्थाएं समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रभावी माध्यम है। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बैंक की प्रगति और आधुनिक बैंकिंग सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी संस्थाएं आम जन को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन ने दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर में पूजा अर्चना कर राष्ट्र कल्याण की प्रार्थना की। इस अवसर पर 12 साल विश्वास के जन कल्याण के की थीम पर 3 दिवसीय जिला प्रदर्शनी भी लगाई गई। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय वयोश्री के तहत राज्य सरकार एवं एलिम्को के सहयोग से इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सामाजिक न्याय और अधिकार

0: संस्कृता मंत्री अविनाश गहलोत और सांसद सीपी जोशी ने शिरकत की। शिविर में 800 वरिष्ठ नागरिकों को 75 लाख रुपए मूल्य के सहायक उपकरण वितरित किए गए। पिछले दिनों चित्तौड़गढ़ सांसद और एयरपोर्ट सलाहकार समिति के अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में उदयपुर में एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद सीपी जोशी ने उदयपुर स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट को पश्चिम भारत का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एवं विमानन केंद्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने एयरपोर्ट पर टर्मिनल विस्तार, वाईफाई, डिजिटल सूचना प्रणाली, रनवे विस्तार, कार्गो हब एवं एरो सिटी विकास की संभावना पर विस्तृत रोड मैप तैयार करने का भी सुझाव दिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर डॉ. मंजू ने भारतीय पर्यटन एवं पुरातत्व विभाग, नगर परिषद और यूआईटी अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर ने दुर्ग पर हुए अवैध निर्माण पर कड़ी कार्रवाई कर अतिक्रमण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और अतिक्रमणों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में दुर्ग में विकसित की जाने वाली मूलभूत सुविधाओं, विद्युत साज सज्जा और यातायात प्रबंधन को भी प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ई वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण के लिए वेस्ट संग्रहण अभियान का शुभारंभ करते हुए ई वेस्ट रथ को रवाना किया गया। जिला कलेक्टर ने आमजन से पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करने की अपील की। इसी कड़ी में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत चित्तौड़ दुर्ग पर महास्वच्छता अभियान चलाया गया। जिले में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संकल्प और उत्साह के साथ मनाया गया। जिले भर में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में योग गुरु सुरेश शर्मा और डॉ. मुकेश माली ने योगाभ्यास कराया। कार्यक्रम के दौरान योग स्थल पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का भी लाइव प्रसारण किया गया। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुपे से प्रादेशिक समाचार।

तैनिया आज री खास खबरा अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस रे मौके माथे राज्य स्तरीय आयोजन काले जयपुर में है। राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी री लॉन्चिंग वेला। गृह मंत्री अमित शाह अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस रे मौके नशे रे खिलाफ एकजुट होर युद्ध छेड़ने रो हेलू करो। हजरत इमाम हुसैन री शहादत रो प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम रे साथे मनायो जा रियो है। मातम रे बीचे करबला माए ताजिया दफनाया जा रिया है और प्रदेश माए लाला 24 घंटा माए कुछ एक थोड़ा माथे बिरखारी गतिविधियां जारी। मानसून रे अगले हफ्ता ताई और आगे बदवारी आस। समाचार रे साथे मैं संगीता शर्मा और अबे समाचार विगतवार। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस रे मौके मथे काले कार्यक्रम राख्या जावेला। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब माया मोहन वाला इन जलसा माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा उद्योग तथा वाणिज्य विभाग री योजना वाला लाभार्थियों ने कर्ज अनुदान और सब्सिडी रा डमी चेक दिया जावेला। वे रिकोरी योजना वाला लाभार्थियों ने भी भूमि आवंटन पत्र और ऑफर लेटर सौंपेला। प्रदेश माए पहली दफा राख्या जा रिया इन कार्यक्रम रे चालता राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी ओडीओपी कॉफी टेबल बुक और रैंप पोर्टल भी लॉन्च करेला। जलसा माए रिकोरी डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी रा आवंटन पत्र और ऑफर लेटर भी दिया जावेला। कार्यक्रम माए उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और राज्य मंत्री के विश्नोई समेत वरिष्ठ अहलकार मौजूद रहेला। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। युवा और नवी पीढ़ी माए नशा और मादक पदार्थ रे बद्धता इस्तेमाल ने रोकने और वाने जागरूक करने खातिर ओ दिन मनायो जावे है। इन मौके माथे देश प्रदेश माए न्यारी न्यारी गतिविधियां राखी जी। नवी दिल्ली माए नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर री मीटिंग माए गृह मंत्री अमित शाह नशा रे खिलाफ एकजुट वेर युद्ध छेड़ने रो हेलू करो। वाणा कहो कि मादक पदार्थ रो ओ कारोबार देश री सुरक्षा सामाजिक व्यवस्था

0: और दया भाव बनाए राखने री अरज भी करी। देश ने सबसू बत्ती सैन्य कर्मी देवन वाला झुंझुनू जिला रा वायु सैन्य कर्मी सुरेंद्र मोगा रे सर्वोच्च बलिदान ने नेशनल वॉर मेमोरियल री वेबसाइट माए भेड़ो करियो गयो है। सार्जेंट मोगा ऑपरेशन सिंदूर रे चालता देश खातिर आपरा प्राण न्योछावर करया हा। मारे साथे दूजा पांच जवाना ने भी वेबसाइट रे रोल ऑफ ऑनर माए भेड़ो करियो गयो है। इनरे साथे ही युद्ध स्मारक री 3D वॉल माथे भी सुरेंद्र मोगा रो नाम लिखियो गयो है। ध्यान जोग है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद माए एक सवाल रे जवाब माए ऑपरेशन सिंदूर रे चालता शहीद भारतीय सैनिकारी सही सूची देश ने देने री बात कही ही। भीलवाड़ा माए जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र री कानिसू औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर लगायो गयो। जिला महाप्रबंधक कमलेश कुमार मीणा बतायो कि इन मौके माथे युवा संबल मेलो भी राख्यो गयो। इनरो लखस युवावां ने उद्यमी रे तौर माथे प्रोत्साहित करने और स्वरोजगार खातिर प्रेरित करियो गयो है। झुंझुनू जिले रे कुतुबपुरा गांव माए नाबार्ड और डालमिया सेवा संस्थान री कानिसू आज नॉन वाटर शेड परियोजना रो शुभारंभ हुयो। नाबार्ड रा मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर आर रवि बाबू ग्रामीणा ने बिरखा रे पानी ने भिड़ो करने और खेता माए अजोला और कम पानी री फसलां उगाने रो हेलो करियो। इन मौके माथे वणा खेतर माए बैंकिंग सेवावां रे विस्तार और रोजगार परक प्रशिक्षण योजनावां री शुरुआत री बात भी करी। IRCTC नुओ पर्यटन सर्किट डिवाइन ईस्ट टेंपल टूर शुरू करियो है। इन रे खातिर भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन चलाई जावेली। प्रायोगिक तौर माथे शुरू होने माथे इन 11 दिन री रेल यात्रा रे चालता श्रद्धालुओं और सैलानियों ने उत्तर प्रदेश ओडिशा पश्चिम बंगाल और झारखंड रे खास तीर्थ स्थला माथे जावन रो मौको मिलेला। आ यात्रा दिल्ली माए सफदरगंज रेलवे स्टेशन सु शुरू वेली। रेलगाड़ी माए यात्रियों ने 3-स्टार होटल माए रुकाणो भोजन समेत AC वाहना माए दर्शनीय स्थल माथे घुमाया जावेला। इनरे खातिर IRCTC रे टूरिज्म पोर्टल माथे या IRCTC पर्यटन कार्यालय माथे बुकिंग कराई जा सके है। अरबे मौसम प्रदेश माए लाडला 24 घंटा रे चालता पूर्वी और पश्चिमी भागा माए कुछ एक जगावा माथे बारिश री गतिविधियां दर्ज करी जी। इनरे चालता दक्षिणी जिला माए भी कई जगावा माथे तेज बिरखा दर्ज हुई। मौसम महकमे रे मुजब झालावाड़ जिला रा अकलेरा माए सबसू बत्ती 5 सेंटीमीटर बिरखा दर्ज हुई। राजधानी जयपुर समेत आसे पासे रे इलाका माए आज बादल छाया रिया और कई जगावा माथे बूंदाबांदी भी। महकमा रे मुजब आवता 2-3 दिना माए बीकानेर जयपुर भरतपुर अजमेर और कोटा संभाग माए प्री मानसून री बिरखारी गतिविधियां बणियोड़ी रह सके है। इन बीचे मानसून गुजरात और मध्य प्रदेश रे कई और भागा माए आगे बढ़ियो है। इनरे अगले हफ्ते ताई मध्य और उत्तरी भारत ताई पहुंचने खातिर परिस्थितियां अनुकूल बणियोड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 जून ने आकाशवाणी रा मन की बात कार्यक्रम माए आपरा विचार साझा करेला। ओ मासिक रेडियो कार्यक्रम रो 135वो एपिसोड वेला। कार्यक्रम रो प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन रा सगला चैनला AIR न्यूज री वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप माथे करियो जावेला। साथे ही AIR न्यूज DD न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा यूट्यूब चैनल माथे इनरो सीधो प्रसारण भी वेला। हिंदी प्रसारण रे तुरंत पाछे क्षेत्रीय भाषा मा माए भी कार्यक्रम रो प्रसारण करियो जावेला। और आखिर माए खास खास खबरां आप एक कर फिर सुनो। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस रे मौके माथे राज्य स्तरीय आयोजन काले जयपुर माए। राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी री लॉन्चिंग वेला। गृह मंत्री अमित शाह अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस रे मौके नशे रे खिलाफ एकजुट होर युद्ध छेड़ने रो हेलो करियो। हजरत इमाम हुसैन री शहादत रो प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम रे साथे मनायो जा रियो है। मातम रे बीचे करबला माए ताजिया दफनाया जा रिया है। और प्रदेश माए लाला 24 घंटा माए कुछ एक थोड़ा माथे बिरखारी गतिविधियां जारी। मानसून रे अगले हफ्ता ताई और आगे बदवारी आस है। इनरे साथे ही प्रादेशिक समाचारा रो ओ बुलेटिन अठे ही पुरोव्यो माना। आगलो समाचार बुलेटिन काले सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.5

6 MHz पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 KHz और FM 101.6 MHz पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्रामीण जगत।

0: कार्यक्रम सुनिया सगळ्या बहन भयाने संदीप पारिकर
1: तोला राम राम घणा घणा मोकला मोकला राम राम
0: राम राम राम राम तोला भाई आपने भी देखो कई दिन बाद जद आपसु मिलनो हुए तो बहुत अच्छो भी लागे और सागे सागे एक उड़ीक रहे कि नई नई बात होएगी कोई इन प्रकार की जानकारी भी मिलेगी जेके सु आपने खेती बाड़ी में भी फायदो हो घर परिवार गाँव या आप जो को पशुधन है बिंग में भी कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी जेकी है आपसु मिलेगी।
1: देखो भाई पहली एक काम मैं जी को समझ में आई है कि भाई आपने पहली तय कर लेना चाहिए है कि भाई चौपाल में बैठ रहा हूँ पहली आप तय कर ला कि आज आपने कई तरह की जानकारी जी की है भाई लोगों ने सू देनी भी है भाई लोगों ने और भाई लोगों सू लेनी भी है
0: शानी बात।
1: तो खास कर तो देखो बिरखा शुरू होने वाली है तो बिरखाऊ संबंधित खेती री जी की फसल खरीफ री फसल आप किसी ले सका बियारी कर सा बात और बात कर सा आप शिक्षित समाज री विकसित समाज री और सागे सागे बात कर सा पर आधुनिक कृषि उपकरण और मशीनरी और सागे सागे गीत जी
0: गीत
1: का
0: गीत
1: हाँ हाँ भी कर सा
0: बिल्कुल। तो बात यह है कि अब बार जो को देखो अब भगत आ रहे हो आपने खेती बाड़ी के हिसाब से अब देखो जगह भाई लोगों का ना खुद का सिंचाई रहा साधन है तो बंग तो बिया बार मोज हो रही है कि जखन कोई कपास बाईडी है या मूंगफली बंग तो फायदो हो तो चारू में की थोड़ी घनी बिरखा जकी है बरसात जकी बा हो रही है लेकिन खास तौर से आपने इन क्षेत्र की जो बात करा तो सावनी जकी है बा बीज जावे भी मैं मान लो आपने बाजरी बोझ बुआई कर रहा हाँ या ग्वार ले रहा हाँ
1: मूंग मोट है
0: तो वही हिसाब से आन और भगत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल देखो थे बात बता रही हो कि दलहनी जितनी भी फसल है बियर वो भगत है और ये बे फसल भी है जिकी नकदी फसल बोलिया करे अपने तुरंत लाभ भी दे दिया करे और एक और चीज है कि भाई ये फसल जिकी है बिल्कुल वर्षा रे आधारित होवे तो अपने मेहनत भी कम करनी पड़िया करे और पानी री जिकी सिंचाई और साधन व्यवस्था जिकी है बाईश्वर ई भगत पर आप ही मत ही कर दिया करे।
0: बिल्कुल आ बात तो आप बिल्कुल साची कही और देखो मत ही कर दिया करे पर फिर भी क्या है कि क्या एक रहे कि खेती बाड़ी जुए समान है
1: हाँ।
0: अब किसान जो को है वो आपने कहा नहीं कोई कोर कसर तो कौन छोड़े पर दाना जो कहे वो तो मालिक की मर्जी मिल रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और अब का लगी माहौल भी सो बन रहे अब देखो प्री मानसून की अब बिरखा चारू मेर हुई है अब वैज्ञानिक लोग अखबार में आंकड़ा बतावे मैं तो कह भी देर में आवे जब कई सालों को अनुभव अखबार में जो को है इनमें के बिरखा ज्यादा हुआ है आंकड़ो यहाँ कह रहे पर आपने जब बुजुर्ग है वह कहता है जी नो तपे में डोमू नहीं तपे नहीं तो फिर आगे बिरखा को नहीं हुए। अब देखो आज की अब जो को जलवायु परिवर्तन हुए नहीं तो राम भाई अब भी इन बीच में एक आम किसान जो को है वो ये देखे कुल सी बात मानना तो अब जलवायु परिवर्तन के कारण के और परिवर्तन जगह है खेती बाड़ी में अपन देखा न मिलेगा भाई तो देखो आया ही ठापड़ी
1: ठापड़ सी बिल्कुल। देखो और एक बात और है कि भी बिरखा भगत है नी एक काम एक सावचिती सब लोगों ने मत ही करनी चाहिए
0: बाकी
1: और वह आया है कि वर्षा जल संरक्षण और जल संचयन यानी पानी ने भेड़ो करनो और पानी ने सुरक्षित रखनो इरे वास्ते भी अपन ई भगत उपाय करनो चाहिए कि भाई अपन मान लो और धके फसलारी वास्ते जरूरत पड़े या अपन

0: पीण सारू और भी कोई व्यवस्था सारू पानी की आवश्यकता हो तो बाई जल सू आप पूरी कर सकते
1: बात है सावचेती की।
0: हाँ
1: तो सावचेती की बात है ये चीज ने अपना ध्यान में रखा और आगे बातचीत और भी करांगा पर बीस पहले जो आप कहो कि पानी जो को भेड़ो रखना तो भेड़ो रखने के लिए थोड़ी सी आप आरज करा भी झिरमिक झिरमिक जकी है आगे होती रहे
0: बिल्कुल
1: तो एक आपको तो की संगीत के माध्यम से भी बात कर लें
0: बिल्कुल
1: जी हाँ सुनो

0: व्यापार नगर गंगा शहर।
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में।
2: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
2: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का।

यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और जल, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं ज्यादा बारिश और बाढ़ होती है तो कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ता है। इन दोनों से पीने के पानी, सफाई और खेती के लिए पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। कोविड-19 जैसे महामारी के दौरान साफ पानी बहुत जरूरी होता है। पानी की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित कम आमदनी वाले समुदाय होते हैं। क्या आप जानते हैं 2020 में दुनिया के 26% लोगों के पास पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी की सुविधा नहीं थी।

0: व्यापार नगर गंगा शहर।
1: तो सारे तो हाँ संदेश और संदेशों पहले आप बहुत मीठो सो झिलमिल झिलमिल बरस रहे हो गीतों सुनो और गीत गाए रहे हो मुल्तान खां और पार्टी रो।
2: बिल्कुल, और बात कर रहा है देखो खेतीबाड़ी दी, और तो खेतीबाड़ी से जुड़ियोड़ो एक काम और है, वो है मतलब हर किसानी से जुड़ियोड़ो काम है कि भई आप रहे जिको दूध उत्पादन रो काम है, चाहे वो भेड़ रो दूध है, बकरी रो दूध है, गाय रो दूध है, भैंस रो दूध है, ऊंट रो दूध है, ये सब जिका दूध है यारा अलग अलग महत्व है, अलग अलग लाभ है और अलग अलग तरह से ई व्यवसाय ने भी अपनाया जा सके।
1: और एक चीज और है कि देखो दूध उत्पादन जो को है नी, इन क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावना जिकी है वह है, और अभी तई बा पूरी चीजों को फायदा जो को है वो हर किसान तक पहुंच पे। जी अब आप एक जिक्र करो ऊंट रो दूध,
2: हाँ
1: अब इन कहीं ध्यान को नहीं गेड़ो ज्यादा है नी, तो इनमें भी बहुत ज्यादा स्कोप है। कह रहे मतलब दूध उत्पादन इन प्रकार रो क्षेत्र है जगह माँ अपना जगह किसान भाई लोग है, मैं आपकी किसानी तो करी है लेकिन ये सागर सागर जो को ढेरो धापो रखे नी भी पर भी थोड़ा सो जो वैज्ञानिक रूप से ध्यान देवे नी तो बहुत अच्छा उत्पादन जो को है ले सके।
2: बिल्कुल, देखो मैं आ बात इन सारू कही कि भाई आप दूध जो व्यवसाय करने वाला लोग परंपरागत रूप से दूध रो उत्पादन कर लिया है। जरूरत आ है कि भाई देखो आज क्या करे है कि केरी प्लेटलेट्स कम होगी, खून में बहुत
1: बढ़ रहे हैं,
2: हाँ हाँ तो कब कम होगी हो तुरंत में दौड़े के साथ बकरी रो दूध मिल
1: जाएगा ठीक
2: है। तो अपन आवश्यकता क्या है कि ये राज्य का दूध राज्य का वैज्ञानिक पहलू है, ऊंटनी रो दूध बहुत किया करे भाई चाहे क्या है नहीं बा बीमारी,
1: हाँ
2: ओटिज्म बीमारियां, कई तरह की बीमारियां, बीयर मायने सगलों ज्यादा लाभदायक जो है वो ऊंटनी।

0: बिल्कुल, जो ईयर जिसका वैज्ञानिक पक्ष यानी बेजान बियारो प्रचार प्रसार कर और फिर दुग्ध उत्पादन में काम न करियो जावे तो शायद मन ही लगे संदीप भाई की अपने लाभ भी अच्छो मिल सके।
1: देखो तोला राम भाई, मैं तो थाना चौपान में देखते कह दी कि मैंने बात जे की है बा थारा आना सुन माने सुनने मिले। अब देखो देखो एक चीज का देखो थे ध्यान देना चाहिए कि कोई भी चीज है बंग जो वैज्ञानिक पहलू है नी भी चीज में जो आगे रख गए भी चीज पे जो चर्चा हुआ है समाज में भी प्रति जागरूकता फैलावा नी तो भी चीज से जुड़ेड़ा जका भी क्षेत्र है वहां में उत्पादन में निर्बाध गति से बढ़ाया जा सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखो आ बात अच्छी बताई होते और वैज्ञानिक पद्धति से यदि आप दूध उत्पादन को काम करांगे किसे पशु ने किसो चारो देना चाहिए कितो चारो देना चाहिए किसो चारो देने सुन भी यार दूध उत्पादन बढ़िया करें बस सब चीजारों भी गौर करना चाहिए विचार करना चाहिए और फिर आप रहे ये धीरे धापे रहे काम नहीं।
1: देखो एक चीज हो रही है तो अब वैज्ञानिक पहलू कह दो या आपने इनके प्रति जो सोच है नी भी मैं अपना इन चीज ध्यान रखना की दुनिया का जो दूसरा देश है बांक पशु जका है आपका नाम कम है लेकिन दूध प्रति बिलांत जो है ब्यांत जो है वो बहुत ज्यादा है। तो वो क्यों है कि वह पशु की जकी नस्ल है बिंग अनुसार बिंग खान पान को पूरे ध्यान रखे बिंग स्वास्थ्य के प्रति पूरी जानकारी दे रखे और वैज्ञानिक रूप से बारो दूध उत्पादन जो है वो करे करे
0: करे
1: तो की छोटी छोटी बातें आप आम किसान जो आपने भारतीय किसान है नी वो अच्छी जानकारी देखे को बिन बिन थोड़ी सी इन चीज के प्रति आपकी समझ बढ़ाने की दरकार है।
0: बिल्कुल, देखो कितनी अच्छी बात बता दी कि भाई ई तरह हर काम में समझनो और समझ फिर आगे बढ़नो और आगे बढ़न सारू। अब देखो एक और कोई
1: तो मैं आपको इशारों जो समझ गया और आपने भी सुना और कार्यक्रम सुना रहे जिकी भी बहना है भाई है सब मैंने वो मीठो सो लोग सुनाओ।
0: बिल्कुल सर।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाश वाणी।

0: होता सांस
1: तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: हेल्दी बीकाना। एक जमाने से कहानी

0: दुनिया घूमते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा विचित्र।
1: डाउनलोड बेस ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: तो वही देखो संदेशा सुनिया और संदेशों पे ही अपना पारसनाथ और पार्टी के गाड़ो गीत सुन लिया और अब मैं बात करना देखो संदीप भाई समाजरी क्या करे भी शिक्षित समाज होसी वो समाज ही विकास री तरफ जासी।
3: बिल्कुल सही बात है।
2: और शिक्षित समाज विकसित समाज बात जी की है बात जल्दी पूरी हो सके जब भाई हर आदमी पढ़ी लिखी हुए हर लुगाई पढ़ी लिखी हुए क्योंकि आप जी की खेती बाड़ी री गृहस्थी री सभी गाड़ी है नी वह दो पहिया वाली गाड़ी है और बी में एक पहियो कमजोर और एक पहियो ताकतवर आदि का नहीं चलिया करे।
3: देखो ये है

0: कि अब तक तो दिख जानती
1: हाँ।
0: पर अब जहाँ एक जगह उसे जिक्र करो खेती बाड़ी
1: हाँ।
0: खेती बाड़ी अब धीरे धीरे आधुनिक हो रही है।
1: बिल्कुल,
0: पहले आपन देखो कोई भी चीज की देसी खाद काम में लेता या कोई कीट जनावर लाग जानते तो देसी उपाय जगह बाप कर लेता जगह अपन ठाउनता। पर अब देखो बाद बाकी तो दवाइयां आ रही है तो कितने मिलीलीटर लेनी है इस चीज को ध्यान में देखो पढ़ाई लिखाई के हिसाब रखे जा सके। दूसरी चीज एक चीज और मैं आपने बताऊं आने वाले भगत तो मैं देखो आधुनिक तकनीक के हिसाब को देखा ड्रोन का उपयोग जो को है वो भी खेती बाड़ी में बहुत आम हो जाएगा।
1: बिल्कुल
0: है तो बिन चलानो बिन कमांड देनी ये सारी चीजें भी की है कि पढ़ाई लिखाई की दरकार मांग है।
1: बिल्कुल
0: ये चीजें जी की जरूरी है और धीरे धीरे जो एक कर आप चर्चा करी जो को पॉली हाउस बनाना हुआ तो बिन भी सभी चीजें जी की है वह अंडर कंट्रोल हुआ कंप्यूटराइज हुआ सगले सिस्टम। अब जब बाई भी मान लो खेत में बैठी है तो भी कंप्यूटर चलाना आना चाहिए बिन है।
1: बिल्कुल
0: बिन लिए भी पढ़ाई की दरकार है।
1: बिल्कुल तो कितनी अच्छी बात बता दी कि भाई पॉली हाउस की खेती करनी हो या फिर और आधुनिक तरह की खेती करनी हो तो खेती सर्व अपर घर में जितना भी लोग हैं वे पढ़िया लिखिया उसी तो वे अपनी खेती के काम में भी बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ा सके। भाई आ बात अच्छी है सही बात भी है कि शिक्षित समाज है वो ही विकसित समाज हो सके। समाज री बात कर रहे हैं ना कि लुगाई पुतौरी या मनखरी बात कर रहे हैं सब लाली बात है। बिल्कुल
0: बिल्कुल
1: अपने वो चीज हमेशा संदीप भाई ध्यान रखनी पड़ सी कि समाज रो हर अंग आदि को नहीं हो सके कि भाई कई लोग तो बने कई लोग यही बैठा रहे तो सगला लोगों ने शिक्षित होना जरूरी है। और अबार रो भगत है कि देखो प्रवेश प्रारंभ है स्कूल में।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो अपार टाबरा ने चाहे बाई है चाहे बेटो है भी हमें सबने अपने स्कूल में प्रवेश दिलाने रो काम कर लेना चाहिए।
0: बिल्कुल और देखो कह रहे भी कि राष्ट्र की उन्नति जी की है भी वो आधार ही शिक्षित समाज होया करे।
1: बिल्कुल
0: और शिक्षा का मतलब को नहीं भी आपने आंख आ गया आप कागज बांच लिया कोई खबर कागज बांच लिया। शिक्षा को मतलब है कि व्यक्ति को जो ज्ञान है बिन विवेक जो है नैतिकता जो की है व्यक्तित्व को विकास जो है वो बढ़ना चाहिए।
1: भाई देखो एक बात और है कि पढ़ी लिखे आदमी नहीं आप धंधा और जी का भी करे नहीं वे भी बहुत अच्छी तरह संभाल लिया करे। तो कई बार आ सोचा है भाई कई लोग ये कह दिया करे उल्टी बात करने वाला घने लोग हुए हैं कि भाई देखो पढ़ लिखकर कर सा कहीं तो पढ़ लिखकर चाहे व्यापार करो चाहे खेती करो हर काम में पढ़े लिखे बहुत जरूरी है।
0: बहुत जरूरी है। अगली चीज और बता दू गाँव में मैं देखू आजकल कोई बात के बारे में ठा पान है तो वो एक मोबाइल में कही वो चैट जीपीटी अब बिन के टाबरी में खटाखट बिन मन कह दादा जी पूछो था कोई बात पूछो था जवाब दू तो भाई अब इन प्रकार की जो तकनीक आ रही है और जे ये तकनीकी ज्ञान ने आप अपने काम धंधे से जोड़ लिया तो बिन लिए भी पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है। भी कोई भी जो काम धंधो टोरेडो है बिन में आगे विकास की क्या संभावना है व्यापार जुके है काम धंधो जुके आगे क्या बढ़ा सका इनके लिए भी आपने पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है।
1: देखो आगे टोरन वाली बात कर दी है तो आगे टोरा आप कार्यक्रम ने भी आप देखो कोई सुगन बताऊं वाला काम करा
0: बिल्कुल
1: निरखा और कोई सुगन हुए
0: तो करा भी बड़ा बुजुर्ग कह गया है बाकी बात भी आपने माननी है।
1: बिल्कुल तो कोई चिड़क लिया आपने सुगन बताओ सुन कर लिया मैं सुन पा

0: सा बहुत मीठू की तो सुगंध बताए चिड़कली।
1: हाँ सुगंध सीढ़ी
0: सुगंध तो और गायडो हो कालूराम प्रजापति
1: प्रजापति ने। और देखो बिरखा शुरू होगी है बिरखा की बात कर रहा तो बिरखा जब शुरू हो तो अपने अपर जितना भी कृषि उपकरण है मशीन है खेती बाड़ी वाली बिया ने तैयार कर लेना चाहिए साम लेना चाहिए। और
0: बै तो तैयार है और अब उम्मीद करा कि मालिक चुको है अपन आशीष देवे और आपने खेता में बुआ चुका मोटा मोटा दाना हो
1: बिल्कुल। और कोई आशीष वाली
0: बिल्कुल हर जैसे हर जैसे सुनो सा
1: बिल्कुल
2: संत पावड़ाया मैं बांटू आज बधाई मैं बांटू

ये था ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्रामीण जगत, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। शाम के 7:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम।

असलम साबरी कवाल और साथियों के गाए इस नात के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है, मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं संबंध फिल्म के महेंद्र कपूर के गाए प्रदीप के इस गीत के साथ, जिसे संगीत या OP नैयर ने

0: चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के भोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: और श्रोताओं आप फिल्म संगीत के कार्यक्रम में सुनिए लता मंगेशकर और कुमार सानू को। फिल्म का नाम है सलमा पे दिल आ गया। गीतकार सावन कुमार और संगीतकार आदेश श्रीवास्तव।

उदित नारायण और चित्रा, फिल्म का नाम सलाखें, गीतकार समीर और संगीतकार दिलीप सेन समीर सेन। और अब सुनिए साहिब बीबी और गुलाम, इस फिल्म से आशा भोंसले की आवाज में शकील बदायूनी का ये गीत। संगीतकार हैं हेमंत कुमार।

फिल्म का नाम सहेली, गीतकार इंदिवर और संगीतकार कल्याण जयानंद जी। और अब सुनिए सगाई फिल्म से मोहम्मद रफी और आशा भोसले को।

आज गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये भूला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के भूला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं धीरा सेन के गाए इस लोकगीत के साथ।

केंद्र से खिदवार रचे इस लोक भजन को गया गोविंद सिंह राठौड़ ने। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रेडियो 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 8:45 हो रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या और उसके बाद न्यूज एट 9।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार

0: नियंत्रण पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। गृह मंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों के सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्ताद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि खतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार

0: किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकीन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकीन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गई। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। यीशु के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। यूएस ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो टियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू टोंग को हराया, तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन ड्रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमरीका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Home Minister Amit Shah launches 3-year vision document for narcotics control, calls for better coordination and use of technology to strengthen anti-drug campaign. Center to deploy 1,000 advisory personnel across the country and upgrade trade portal to maximize benefits of India-UK trade agreement. Death toll in Venezuela.

0: आयुष वाणी है 9 दशक यानी 90 साल। जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सुनिए प्यार तूने क्या किया। इस फिल्म से सोनू निगम और कविता सुब्रमण्यम को

वह कलाकार अलका याग्निक और सोनू निगम, फिल्म का नाम चोरी चोरी चुपके चुपके। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से।

0: तेरे फूल पसीने के जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम खुल के ही सो जाएंगे। दौलत हराम की है ये किस काम की, दौलत हराम की है ये किस काम की, हलो कसम इससे हाथ न लगाएंगे,
1: हाथ न लगाएंगे, हाथ न लगाएंगे।
0: अरे खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे।

0: लगी
1: रुपए चोर बाजारी अरे लुट गई दौलत सारी सेठ भी अंदर भाल भी अंदर दोनों ना बच पाएंगे जैसे सेठ बड़ा है वैसे सारे मारे जाएंगे
0: सारे मारे जाएंगे
1: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे नहीं तो यारो हम भूख

हुक्म चलाता रहा सब कर दे सब कर दे।

0: जारी, अगर वो टूटी सारी तो जालिम अंदर जोश की अंदर जोश की जाने आएंगे, जैसे मारा गया वो जालिम सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम

ये दौलत है बीमारी है लानत चोर बदारी, ये दौलत है बीमारी है लानत चोर बदारी। अरे छोड़ दो मारा मारी और फेंक दो पूरी कटारी।

0: अगर डरेंगे झगड़ा प्यारे तारे मारे जाएंगे,
1: तारे मारे जाएंगे, तारे मारे जाएंगे।
0: इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे,
1: पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे,
0: नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे,
1: नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे।
0: दौलत हराम की है ये किसान की, दौलत हराम की है ये किसान की, खालो कसम इससे हाथ न लगाएंगे,
1: हाथ न लगाएंगे, हाथ न लगाएंगे, पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे।

खून पसीना, गायक कलाकार किशोर कुमार और साथी। और अब सुनिए जवानी फिल्म से आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज।

ये थे मोहम्मद रफी और उषा मंगेशकर। फिल्म का नाम वारदात। गीतकार रमेश पंत और संगीतकार बप्पी लाहिरी। और अब सुनिए, मोहब्बत इसको कहते हैं, इस फिल्म से मजरू सुल्तानपुरी का ये गीत, जिसे गया है सुमन कल्याणपुर ने। संगीतकार हैं खैया।

उस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, संगीतकार एस डी बर्मन, फिल्म का नाम इश्क पर जोर नहीं, गायिका लता मंगेशकर। और अब सुनिए आशा भोंसले और किशोर कुमार को, फिल्म का नाम है दीवार, बोल साहिर लुधियानवी के, संगीत आर डी बर्मन का।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 10 बज रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम गुलिस्तान।

हुसैन, क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, अर्शे नए बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। ख्वातीन हज़रात, आज मुहर्रम की 10 तारीख है, गुलिस्तान की महफिल है, आप सभी का इस्तकबाल आज की इस खुसूसी और खास बज़्म में। मैं हूँ आपके साथ रहमान शेख, आपने ट्यून किया है 101.2 FM। मुहर्रम, मुहर्रम आज है 10 तारीख, अशुरा जिसे कहा जाता है वो आज मनाया।

जा रहा है। सामाइन, आज की इस नज़्म में हम आपके लिए लेकर आए हैं अशरा के मुतालिक कुछ बातें जो हम करेंगे, यानी कि 10 महर्रम के मुतालिक। और साथ ही साथ हम सुनेंगे कलामी शायर में जनाब शाहबाज खान साहब का खूबसूरत कलाम। जनाब शाहबाज नौजवान शायर हैं, बहुत ही उम्दा शायरी करते हैं, उनके कलाम भी हम सुनेंगे कलामी शायर में। और आपके लिए लेकर आए हूँ मौसीकी के खूबसूरत नजराने जो हम सुनेंगे सामने। तो आइए शुरुआत किए देते हैं, और शुरुआत में आप सभी के लिए मौसीकी का ये खूबसूरत नजराना इसका लुत्फ उठाएं, उसके बाद में हम बात करेंगे हमारे दूसरे सेगमेंट की। आप सभी की नजर मौसीकी का ये खूबसूरत नजराना।

0: वाह, क्या खूबसूरत मौसीकी का नजराना। समय जहाँ मौसीकी होती है वहाँ सुकून होता है, और जहाँ सुकून होता है वहाँ दिल भी सुकून पाता है। जी हाँ, आइए अब आगे बढ़ते हैं इस मौसीकी के मुस्कुराने के बाद, और आप सभी की नजरें किए देता हूँ जनाब शाहबाज खान का कलाम शायर में। ये खूबसूरत कलाम, उनकी गजलें, मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा कि शाहबाज जयपुर के नौजवान शायर हैं, बहुत ही आला दर्जे की शायरी करते हैं। आपने उस्तादों से शायरी सीखी है, और जयपुर के अलावा आप कई मुशायरों में अपनी शिरकत कर चुके हैं। तो आप सभी की नजर जनाब शाहबाज खान।
1: किसी के काम आ जाए सो इस काबिल बनाना था, किसी के काम आ जाए सो इस काबिल बनाना था, कि एक पत्थर को पिघला कर मुझे बस दिल बनाना था। किसी के काम आ जाए सो इस काबिल बनाना था, कि एक पत्थर को पिघला कर मुझे बस दिल बनाना था। मैं तो इस उम्र में आकर किसी का दुख मनाता हूँ, मैं तो इस उम्र में आकर किसी का दुख मनाता हूँ, मुझे इस उम्र में आकर के मुस्तकबिल बनाना था। एक मतलब को शेर और सुनिएगा। किसको खबर है क्या जो मुकद्दर में कैद है, किसको खबर है क्या जो मुकद्दर में कैद है, तस्दीक मोतियों की समंदर में कैद है। किसको खबर है क्या जो मुकद्दर में कैद है, तस्दीक मोतियों की समंदर में कैद है। मैं भी तो इन दिनों हूँ उदासी में मुबतला, मैं भी तो इन दिनों हूँ उदासी में मुबतला, वो भी तो आजकल खुदी के घर में कैद है। मैं भी तो इन दिनों हूँ उदासी में मुबतला, वो भी तो आजकल खुदी के घर में कैद है। मैं जिसमें कैद था मेरी उम्र तमाम तक, मैं जिसमें कैद था मेरी उम्र तमाम तक, वो शख्स आज मेरे बराबर में कैद है। एक मतलब कुछ शेर और हैं। क्या है मेरे बारे में फिर गुमान लोगों का, क्या है मेरे बारे में फिर गुमान लोगों का, आपने तो सुन रखा है बयान लोगों का। क्या है मेरे बारे में फिर गुमान लोगों का, आपने तो सुन रखा है बयान लोगों का। लोगों को वो जादू तो बाद में दिखाता है, लोगों को वो जादू तो बाद में दिखाता है, खींचता है जादूगर पहले ध्यान लोगों का। लोगों को वो जादू तो बाद में दिखाता है,

बागों से आंगन से भी झूले टूट जाएंगे, अगर बागों से आंगन से भी झूले टूट जाएंगे तो बचपन रूठ जाएगा ये बच्चे टूट जाएंगे, अगर बागों से आंगन से भी झूले टूट जाएंगे तो बचपन रूठ जाएगा ये बच्चे टूट जाएंगे। निभाना है अगर इनको शगुफ्ता रख जबां अपनी, निभाना है अगर इनको शगुफ्ता रख जबां अपनी, वगरना तलख लहजों से भी रिश्ते टूट जाएंगे। निभाना है अगर इनको शगुफ्ता रख जबां अपनी, वगरना तलख लहजों से भी रिश्ते टूट जाएंगे। घरों में आ चुका है दौर अब रेफ्रिजरेशन का, घरों में आ चुका है दौर अब रेफ्रिजरेशन का, घरों से देखना एक रोज मटके टूट जाएंगे। भले तू लाख वादे कर मगर मालूम है मुझको, भले तू लाख वादे कर मगर मालूम है मुझको, मेरी किस्मत में लिखा है कि वादे टूट जाएंगे। भले तू लाख वादे कर मगर मालूम है मुझको, मेरी किस्मत में लिखा है कि वादे टूट जाएंगे। एक मतलब दो शेर और देखिएगा। देखने लग गया हैरत से जमाना मुझको, देखने लग गया हैरत से जमाना मुझको, जैसे कि मिल गया हो कोई खजाना मुझको, देखने लग गया हैरत से जमाना मुझको, जैसे कि मिल गया कोई खजाना मुझको, मुझको मतलब ही नहीं कौन मुकाबिल है मेरे, मुझको मतलब ही नहीं कौन मुकाबिल है मेरे, बस निशाने पे लगाना है निशाना मुझको, मुझको मतलब ही नहीं कौन मुकाबिल है मेरे, बस निशाने पे लगाना है निशाना मुझको। माना दीपक हूँ कहीं काम ही आ जाऊंगा, माना दीपक हूँ कहीं काम ही आ जाऊंगा, तीरगी छटने लगे तब ही बुझाना मुझको, माना दीपक हूँ कहीं काम ही आ जाऊंगा, तीरगी छटने लगे तब ही बुझाना मुझको। अरे गजल से कुछ शेर है कि पहले तो ये जहान मुकम्मल बना दिया, पहले तो ये जहान मुकम्मल बना दिया, फिर उसने मेरी जात को अफजल बना दिया, पहले तो ये जहान मुकम्मल बना दिया, फिर उसने मेरी जात को अफजल बना दिया। हंसता हुआ ये चेहरा लगे और भी हसीन, हंसता हुआ ये चेहरा लगे और भी हसीन, सो उसने गाल पर तेरे डिंपल बना दिया। हंसता हुआ ये चेहरा लगे और भी हसीन, सो उसने गाल पर तेरे डिंपल बना दिया। पहले बनाए उसने ही ये सारे मसले, पहले बनाए उसने ही ये सारे मसले, फिर उसने सारे मसलों का हल बना दिया। जिनको है कद्र वक्त की उनको दिया है आज, जिनको है कद्र वक्त की उनको दिया है आज, जो सो रहे हैं उनके लिए कल बना दिया। जिनको है कद्र वक्त की उनको दिया है आज, जो सो रहे हैं उनके लिए कल बना दिया। वो जिस जगह पे मेरे लड़कपन की याद थी, वो जिस जगह पे मेरे लड़कपन की याद थी, एक पैसे वाले ने वहाँ होटल बना दिया। वो जिस जगह पे मेरे लड़कपन की याद थी, एक पैसे वाले ने वहाँ होटल बना दिया। उसके हर एक फैसले पे रो रहे हैं सब, उसके हर एक फैसले पे रो रहे हैं सब, शहबाज किसको कौम का फैसल बना दिया। एक मतलब कुछ शेर है कि किसी को तो बड़े बूढ़ों ने दौलत से नवाजा है, किसी को तो बड़े बूढ़ों ने दौलत से नवाजा है, हमें लेकिन बुजुर्गों ने नसीहत से नवाजा है। किसी को तो बड़े बूढ़ों ने दौलत से नवाजा है, हमें लेकिन बुजुर्गों ने नसीहत से नवाजा है। तुम्हें जब देखता हूँ तो ये मन ही मन में कहता हूँ, तुम्हें जब देखता हूँ तो ये मन ही मन में कहता हूँ, खुदाया शुक्र तूने ऐसी किस्मत से नवाजा है। तुम्हें जब देखता हूँ तो ये मन ही मन में कहता हूँ, खुदाया शुक्र तूने ऐसी किस्मत से नवाजा है। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं काबिल ही नहीं इसके, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं काबिल ही नहीं इसके, मुझे एक शख्स ने आज इतनी हैरत से नवाजा है। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं काबिल ही नहीं इसके, मुझे एक शख्स ने आज इतनी हैरत से नवाजा है। मैं इस नफरत के आलम में खुदा का शुक्र करता हूँ, मैं इस नफरत के आलम में खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसकी जात ने मुझको मोहब्बत से नवाजा है। मैं इस नफरत के आलम में खुदा का शुक्र करता हूँ

इस्लामी साल का पहला महीना है। आमतौर पर जब नया साल शुरू होता है तो लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन इस्लामी साल की शुरुआत हमें इबादत, तौबा, सब्र और कुर्बानी का पैगाम देती है। आज हम 10 मुहर्रम यानी यौमे अशुरा की अहमियत, उसकी फजीलत और उससे मिलने वाले सबक पर बात करेंगे। मुहर्रम की अहमियत। अल्लाह ताला ने कुरान में 4 महीनों को खास इज्जत दी है, उनमें से एक है मुहर्रम। इसी वजह से इसे मुहर्रमुल हराम कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान के बाद

बस करके नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ हमने बहुत ही अहम मौजू पर यानी 10 मुहर्रम पर अशुरा पर हमने बात, जिसमें हमने सेक्रीफाइस, झूठ से बचना और गरीबों की मिस्टरों की मदद करना और सच पर डटे रहना, ये हमने जाना जो हमें खास आज का दिन बताता है। उम्मीद है आपको आज का एक खास सेगमेंट पसंद आया होगा। सुनो हम दीजिए मुझे यानी रहमान शेख को इजाजत। आज के गुलिस्तान इतने ही, आने वाले हफ्ते फिर से आपसे किसी मौजू पर बात होगी। तब तक के लिए आप सभी से इजाजत का तलबगार मैं रहमान शेख, हमारे इस प्रोग्राम के रूह हवाए जनाब राजेंद्र सिंह दारा। खुदा हाफिज, शब खैर।

215 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रजनीकांत देसाई का ख्याल गायन राग मारू बिहाग में। तबले पर संगत कर रहे हैं रहमान खान।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रजनीकांत देसाई का उपशास्त्रीय ख्याल गायन राग मारू बिहाग में। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर। रात्रि के 11 बज रहे हैं। अब दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे। समाचार पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी भाषा में होंगे।

0: के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज्ड कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल।

0: पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी
1: आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।